मीडियम वेव 462.9 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है, शक सम्मत 1948 के ज्येष्ठ मास की नवी तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे।

0: के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कभी कभी जीवन की सबसे गहरी बातें शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में उतरती हैं। जैसे सुबह की पहली हवा कुछ कहे बिना ताजगी दे जाती है, जैसे मंदिर की घंटियों की ध्वनि मन को अनायास शांत कर देती है, वैसे ही कुछ भाव सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं। भारत की मिट्टी में ऐसे ही भाव बसे हैं, जहाँ राष्ट्र प्रेम केवल एक नारा नहीं, यह आत्मा की संवेदना है। यह वही भूमि है जहाँ किसान खेत में हल चलाते समय भी धरती को प्रणाम करता है, जहाँ सैनिक सीमा पर खड़े होकर अपने प्राणों से पहले तिरंगे का मान सोचता है, और जहाँ एक साधारण मनुष्य भी अपने कर्म को पूजा मानता है।

मनुष्य का जीवन उसके विचारों की दिशा से बनता है। यदि मन में भय रहे तो अवसर भी संकट लगने लगते हैं, यदि मन में विश्वास रहे तो कठिनाइयां भी मार्ग बन जाती हैं। इसलिए भारतीय चिंतन ने मन को साधने पर सबसे अधिक बल दिया है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जब मन अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त होता है, तभी उसमें भक्ति का प्रकाश उतरता है।

मनुष्य पूरी दुनिया में ईश्वर को खोजता है, पर सबसे कम अपने भीतर देखता है। जब मन शांत होता है, जब विचार सरल होते हैं, जब हृदय में करुणा होती है, तभी भीतर का मंदिर जागता है। ईश्वर केवल पत्थरों की मूर्तियों में नहीं, वह सत्य में है, वह प्रेम में है, वह करुणा में है। और जब मनुष्य अपने भीतर उस प्रकाश को अनुभव कर लेता है, तब उसे हर दिशा में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं।

नदी कभी रुकती नहीं, उसके मार्ग में पत्थर भी आते हैं, घाटियां भी, तीव्र मोड़ भी, फिर भी वह बहती रहती है। जीवन भी ऐसा ही है, जो रुक गया वह थक गया, जो बहता रहा वह आगे बढ़ता रहा। कठिनाइयां जीवन को रोकने नहीं आती, बल्कि यह सिखाने आती हैं कि भीतर की शक्ति कितनी गहरी है। भक्ति भी जीवन को रोकती नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देती है।

दीपक की सबसे बड़ी सुंदरता उसका प्रकाश है। वह अपने लिए नहीं जलता, दूसरों के लिए जलता है। मनुष्य भी जब केवल अपने लिए जीता है तो उसका जीवन सीमित रह जाता है, पर जब वह किसी और के जीवन में आशा भरता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। ईश्वर ने हमें केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी भेजा है। एक मधुर शब्द, एक छोटा सहयोग, एक सच्ची प्रार्थना किसी का जीवन बदल सकती है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चिंतन, आलेख सुधीर तेलंगका और वाचक स्वर मनीष कुमार सोनी का।
1: आत्मबोध केवल एक आध्यात्मिक शब्द नहीं है, बल्कि ये स्वयं के अस्तित्व के साथ पुनर्मिलन की एक उत्सवपूर्ण प्रक्रिया है। संसार की भीड़ में हम अक्सर दूसरों को जानने और उन्हें प्रभावित करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी दृष्टि बाहर से मुड़कर भीतर की ओर जाती है, उसी दिन आत्मबोध का जन्म होता है। वह स्वयं को पुनः प्राप्त करने की एक ऐसी कला है जो हमें साधारण से असाधारण बना देती है। हमारा व्यक्तित्व अक्सर समाज, शिक्षा और अनुभवों द्वारा थोपे गए मुखौटों से ढका होता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई अमीर है तो कोई गरीब, लेकिन आत्मबोध हमें सिखाता है कि ये सब भूमिकाएं हैं जो हम इस संसार के रंगमंच पर निभा रहे हैं। सत्य क्या है? आप वह शरीर नहीं जो बीमार होता है, न ही वह मन जो अशांत रहता है। आप वह चेतना है जो इन सबको देख रही है। दृष्टा भाव क्या है? जैसे ही हम स्वयं को एक दृष्टा के रूप में देखने लगते हैं, हमारे जीवन के आधे कष्ट स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मबोध का सबसे सुंदर परिणाम है भीतर का सन्नाटा संगीत में बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। आत्मबोध का मार्ग हमें एक ऐसे बिंदु पर ले जाता है जहां केवल आनंद शेष रह जाता है। यह अंत नहीं बल्कि एक नई और अनंत शुरुआत है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो बाहरी शोर आपको परेशान करना बंद कर देता है। आप अपने भीतर एक ऐसा केंद्र पा लेते हैं जो हर परिस्थिति में स्थिर होता है। यह शांति किसी हिमालय की गुफा में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद होती है, जिसे केवल जागरूकता की चाबी से खोला जा सकता है। स्वयं की अनंत यात्रा आत्मबोध कोई गंतव्य नहीं होती, बल्कि यह एक जीवंत यात्रा है। यह उस धूल को साफ करने की प्रक्रिया है जो सदियों से संस्कारों, सामाजिक धारणाओं और मानसिक विकारों के कारण हमारी आत्मा के दर्पण पर जम गई है। उपनिषदों का महान उद्घोष है अहम ब्रह्मास्मि। यह अहंकार की घोषणा नहीं है, बल्कि यह उस विराट सत्य की स्वीकृति है जो हमारे भीतर का लघु स्व वास्तव में उस अनंत परमात्मा का ही अंश है। विस्तार से देखा जाए तो आत्मबोध की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम अज्ञान के वशीभूत हैं। हम स्वयं को वही मानते हैं जो दूसरे हमारे बारे में कहते हैं। हम मानते हैं कि हम हाड़ मांस का शरीर है। यह सीमित सोच ही बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के डर को जन्म देती है। हमारा मन हमें भूतकाल के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। आत्मबोध हमें उस वर्तमान में ले जाता है, वर्तमान के उस क्षण में ले आता है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारी आत्मा 5 परतों के भीतर छुपी होती है। आत्मबोध का अर्थ है इन परतों को पार करना, जिनमें प्रमुख

0: होती है अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर, प्राणमय कोश हमारी जीवन शक्ति और श्वास, मनोमय कोश विचार और भावनाएं, विज्ञानमय कोश बुद्धि और विवेक, आनंदमय कोश वो गहरी परत जहां केवल शुद्ध आनंद है। इन पांचों को पार करने के बाद ही हम शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों को जब आत्मबोध हुआ तो उनके भीतर संपूर्ण मानवता के लिए करुणा जागृत हुई। आत्मज्ञानी व्यक्ति लालच और ईर्ष्या से मुक्त होता है, जिससे एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना होती है। आत्मबोध मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमें बताता है कि हम तुच्छ नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि हम उस प्रकाश की संतान हैं जो कभी नहीं बुझता। जिस दिन हम स्वयं से प्रेम करना और स्वयं को जानना शुरू कर देते हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ एक सुर में नाचने लगता है, नृत्य करने लगता है। शायद इसीलिए स्वामी विवेकानंद की उक्ति चरितार्थ हो जाती है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख सुधीर तेलंग का और वाचक सुर मनीष कुमार सोनी का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं खेती की बातें। विषय है केचुआ खाद बर्मी कंपोस्ट, वाचक स्वर डॉक्टर अनुराधा शर्मा का।
2: सभी किसान भाई बहनों का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन बात करेंगे केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट के बारे में। अपन ये जाना है कि केचुओ बहुत शांत न शर्मिलो स्वभाव को रच न रात दिन सतत परिश्रम करीना न किसान भाई बहन का लेना अच्छी खाद तैयार करीना देज। एक लेना किसान भाई बहन एक अपनो मित्र मानज, मित्र जीव मानज। केचुआ जी छे वो घास फूस कचरा मिट्टी सब चीज न का भोज्य पदार्थ का रूप में भोजन करीना न पचैना न अवशिष्ट पदार्थ का रूप में अच्छी खाद तैयार करीना न किसान न का देज। केचुआ से मिट्टी भुरभुरी हुई जाए, पोली हुई जाए, काम वायु संचार अच्छो हो, न जल धारण की क्षमता भी बढ़ी जाए, जो फसल की बढ़वार करे ना बहुत उपयुक्त रहे। अब केचुआ खाद होज काई वो अपूर्ण का समझने की जरूरत है। तो केचुआ द्वारा जी वनस्पति या जो भी दूसरो भी कचरो है वो सब गोबर खा भी खाई लाए, वो जी भी अपन कचरो दे रहा जाए अपना फसल को अवशेष छे वो सब न का खाई ना विष्टा का रूप में निकालज। न चाय की पत्ती का समान भूरा रंग को भुरभुरो मुलायम पदार्थ जीरज वो का अपन केचुआ खाद कमाज। एका में पौधा करना आवश्यक सभी तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध रह। बनावना का तरीका की बात करा तो केचुआ खाद बनावना करना किसान भाई बहन का 10x3x2 मतलब 10 फीट लंबी 3 फीट चौड़ी 2 फीट ऊंची आकार की खुली क्यारी बने ना उना तरीका से केचुआ खाद का निर्माण यदि वो करेगा तो कृषक न करना ये सस्ती न उपयोगी विधि साबित हो जाए। 2 क्यारी न का बीच में 1.5 फीट को अंतर रखना चाहिए ताकि आना जाना में काम करना में आसानी हो जाए। क्यारी का ऊपर झोपड़ी नुमा या छायादार शेड बनाना बहुत आवश्यक छे। क्यारी न का भरना करना घास फूस भूसो कचरो अदपको गोबर सबको मिलाई ना एकत्रित करना ना नम थोड़ा सा बनाई देवा न फिर ओका क्यारी नमा नाखी देवा। क्यारी नमा सामग्री सबसे पहला परत में मिट्टी फिर रेत बजरी ओका बाद मिश्रित रूप से 3-4 परत ऐसी इना तरीका से बने ना दबाई देनु। दूसरी परत का ऊपर कभी कभी मिट्टी की 1-6 इंच की परत भी राखी सकांज। तीसरी परत का रूप में सूखी पत्ती ने या गोबर कभी नाखी सकांज। ऐसा 3-4 इंच की एक परत अपन बिछाई देवांज। एका ऊपर लगभग 1.5 हजार केचुआ प्रति क्यारी में नाखनू पड़ेगा। ओका बाद गोबर की खाद मिश्रित जी पत्ती ने छे ओका 6 इंच मोटी तह ओका ऊपर आरु नाखी देवा। अमा गड्ढा भरी जाने का बाद ओका टाट की बोरी नसी ढाकनु बहुत आवश्यक छे क्योंकि यदि नमी उड़ी जाएगा तो फिर केचुआ मरना शुरू हो जाए। तो एकाले ना सुबह शाम हल्को पानी को छिड़काव करनु भी जरूरी छे। एका बाद 3-4 माह तक केचुआ खाद अच्छी बनी ना तैयार हुई जाए जेका ढेर का ऊपर की खाद का हाथ से धीरे धीरे छाणी ना हमारा किसान भाई अलग कर ले। केचुआ खाद का तैयार होना में थोड़ा सा समय लगे 3-4 महीना पर एका में पोषक तत्व की मात्रा सब अच्छी रज। एका में नाइट्रोजन जी छे वो 1.75 से लेना 2.5% तक की मात्रा मिली जाए। फास्फोरस का अपन देखा तो फास्फोरस भी 1.5% से लेना 2.5% तक की मात्रा ओका में मिली जाए। पोटाश का देखी रहा तो पोटाश भी 1.25 से लेना 2 प्रतिशत तक एका में मिलज ये बीजी पोषक तत्व है एका अलावा भी सूक्ष्म पोषक तत्व भी एका में सब अच्छी

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं, आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है, जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा, जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती, देव नदी गंगा, शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे। तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

अभी आप श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्री रामचरितमानस गान में आप सुन रहे थे सुरेश वाटिकर को, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे सुनहरे पल प्रोग्राम। सुबह 9 बजे लोक संगीत में और शाम 6:45 पर कलाकार हैं चंद्र प्रकाश सोनवे और साथी। सुबह 8:30 हम लेकर आएंगे कंप्यूटर फिल्म संगीत। सुबह 9:15 पर और शाम 6:30 सुगम संगीत में कलाकार हैं स्वाति नाटेकर और साथी। 9:30 शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे वहाउद्दीन टागर का रुद्र वीणा वादन, राग है रागिनी तोड़ी। 10:00 सुनिए जिले की चिट्ठी और 10:05 पर हम लेकर आएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम है 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इस घंटे की खास खबरें 11:58 पर, 12:58 पर और 2:58 पर। दिन में 12:30 पर हम लेकर आएंगे संग्रहालय से। 1:30 पर सुनिए लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। दिन में 2:00 सुनिए फिल्म संगीत और 2:30 पर होगा चित्रपट संगीत।

शाम 5 बजे ये वाणी में युवा साथी सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर चर्चा और आज के क्रम में सुनिए हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। 5:45 पर सुनिए फिल्म संगीत। 6 बजे होगा विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी प्रोग्राम होगा। आप सुनेंगे अरुणा सराफ का कविता पाठ और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर जानकारी।

रात्रि 8 बजे सुर्खियों में हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर हम लेकर आएंगे आप श्रोताओं का पसंदीदा प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। रात्रि 9:15 पर सुनिए चित्रगीत। हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं। रात्रि 9:30 राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन, राग है मारू बिहाग और रागेश्री। ये आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होगी। संगत कलाकार हैं तबले पर गंधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।

श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, सुबह 10:05 पर हम लेकर आएंगे आप श्रोताओं का पसंदीदा प्रोग्राम MH Hotline। आप जानते हैं ये एक सजीव फोन इन कार्यक्रम है।

0: आप सुने थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत समाचारों के ठीक बाद हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमा प्रबंधने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणं अवैध प्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च सम्बोधयन् आसीत्।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः 5-दिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मंत्रिमंडलस्य मंत्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापार नेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मंचे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक

0: गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतम स्तरे अस्ति यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 92,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्री प्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुख योजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7-2 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।

0: उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, जिसे आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
4: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
5: अरे काहे का मजा।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
4: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
5: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
4: ये हुई ना बात।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर

0: डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो मिर्चा कर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज गया पहुंचेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीएसएफ को नई जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर बेहतर सुविधाओं के लिए व्यवस्थाओं का अध्ययन जारी। और आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। कल आरसीबी से होगा फाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। यहां वे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचकर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। गुजरात के भुज में कल भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई चौकियों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने बताया कि अब सिर्फ सीमा की रखवाली नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की नई अवधारणा पर काम होगा। श्री शाह ने कहा,
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट

0: के तहत हम ले रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर, भोशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन में कहा है कि इस बार खरीफ सीजन के लिए जरूरत से 11% ज्यादा बीज उपलब्ध हैं। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए 1.74 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार भी तैयार रखा गया है। किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिले इसके लिए अब तक करीब 9.76 करोड़ फार्मर आईडी भी बनाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि तिरुवनंतपुरम की सीमी कंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सीमी ने देश की पहली एज एआई चिप नेत्रा A2000 तैयार कर ली है। ये चिप उन्नत 12 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है। इसका इस्तेमाल निगरानी, ड्रोन, रोबोटिक्स और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत ये एक बड़ी कामयाबी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्य घर योजना प्रदेश में रंग ला रही है। प्रदेश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं और 456 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 6 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया है। सरकार की तरफ से 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया
3: कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्यप्रदेश दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है।
1: भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल पति समर्थ सिंह और सास किरबाला सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सास पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। 12 मई की रात कटारा हिल्स में ट्विशा की मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कल परिवार ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा में ट्विशा की अस्थियां विसर्जित की। केंद्र सरकार ने पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव जल्द ही यूनेस्को भेजा जाएगा। ये दर्जा मिलने के बाद पेंच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ रिसर्च के लिए विदेशी फंडिंग भी मिलेगी। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने कल नई समय सारणी जारी की। पहले यह परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी लेकिन अब यह 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची

जाएंगी। उर्दू के मशहूर शायर और पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र को कल भोपाल में श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में हुई शोक सभा में बड़ी तादाद में शायर, साहित्यकार और नागरिक जमा हुए। 28 मई को उनका निधन हो गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्मश्री से नवाजा था। और अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। कल ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश हुई और तापमान एक झटके में 10 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, नीमच समेत 9 जिलों में ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए, लेकिन गुजरात ने लक्ष्य 18 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 53 गेंदों पर 104 रन की धमाकेदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे फाइनल में गुजरात का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2027 तक सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का काम जारी है। शिवपुरी में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में टीकाकरण महाअभियान की प्रगति का जायजा लिया। झाबुआ में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने इस साल दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य तय किया। आगरमालवा में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दोषी पाए गए लोगों पर अपर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। अनूपपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। ग्वालियर में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली बचत का काम किया जा रहा है। डिंडौरी में किसानों को खाद अब ई टोकन प्रणाली के जरिए दी जाएगी ताकि समय पर और आसानी से उर्वरक मिल सके। पन्ना में गर्मियों में पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इंदौर के ग्राम आशापुरा में 10,000 गौ माताओं की देखभाल के लिए एक बड़ी गौशाला विकसित की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम डीप 462.96 मीटर पर इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, जिसे आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल।

चमकता सूरज, खिलते फूल, ये बहारों का पैगाम है। आज का दिन आप श्रोताओं को ढेर सारी खुशियां दे, यही माजिदा खान का सलाम है।

आप सुन रहे थे फिल्म नीला आकाश का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और राजा भोसले के युगल स्वर में, शब्द रचना राजा मेहंदी अली खां की, संगीत मदन मोहन का।

0: ये खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम था हिमालय की गोद में। शब्द रचना आनंद बख्शी के संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे थे फिल्म शिकारी का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, शब्द रचना फारूक कैसर की, संगीत जी एस कोहली का।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अनपढ़ का ये नगमा। नगमा निगार राजा मेहंदी अली खां, मौसीकार।

0: that one.
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरे पल और आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त माजिदा खान।

0: जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म का गीत आप सुनाए थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, सुरों में पिरोया शंकर जयकिशन ने।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाश।

आप सुनाए थे साहिल लुधियानवी का लिखा गीत रवि के संगीत निर्देशन में, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था दो कलियां।

मंगेशकर की आवाज में गीत रचना कैफी आजमी की थी। इसी गीत के साथ सुनहरे पल प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ।
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
5: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
4: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
6: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
4: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर

0: सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइन की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।

0: इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वह भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्यभर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने सीबीएसई की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज

0: होने का समाचार देते हुए लिखा है, डीके शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा, हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.
4: Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns.
2: Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, informed that the merchant vessel Nissos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to arrive in Vishakhapatnam on the 3rd of June. He said the vessel is carrying around 270,000 metric tons of crude oil.
5: मर्चेंट वेसल निसॉस केरोस, अ मार्शल आइलैंड फ्लैग क्रूड ऑयल टैंकर सेफली ट्रांजिटेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑन

0: prizes. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center asked oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, जिसे आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा ये शानदार सफर समर्पित है उस कलाकार को जो स्क्रीन पर आते ही माहौल बना देता था, जिसकी आंखों का एक्सप्रेशन ही पंचलाइन बन जाता था। जो विलन बने तो डर लगे, कॉमेडियन बने तो पेट पकड़कर हंसी आ जाए, और इमोशनल रोल करे तो दिल को छू जाए। जी हाँ, बात हो रही है भारत के शानदार अभिनेता परेश रावल की। आज का ये आधे घंटे का सफर हंसी, यादों और शानदार फिल्मों के नाम, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे ही कलाकार की जिन्होंने बाबू राव बनकर इतिहास रच दिया था, जिसके डायलॉग आज भी मीम्स में जिंदा हैं और जिसकी टाइमिंग का कोई जवाब नहीं। कहते हैं कॉमेडी करना आसान नहीं होता, लेकिन परेश रावल ने उसे कला बना दिया। 30 मई 1955 को मुंबई में जन्मे परेश रावल ने थिएटर से शुरुआत की थी। पहले उन्होंने छोटे छोटे रोल, फिर निगेटिव किरदार, और धीरे धीरे वो बन गए बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद कलाकारों में से एक। एक समय ऐसा भी था जब फिल्मों में हीरो बदल जाते थे, लेकिन अगर फिल्म में परेश रावल हो तो लोग कहते थे बस अब तो मज़ा ही आ जाएगा। और अब वक्त है ऐसे ही एक गाने का जो उनकी फिल्म आया गया था।

श्रोताओं, परेश रावल सिर्फ कॉमेडी ही नहीं गंभीर अभिनय में भी अपने आप को तराश कर रख देते थे। जहां कुछ फिल्मों में कॉमेडी नहीं गहराई दिखाई देती है, ओ माय गॉड में उनका अभिनय लोगों के दिल तक पहुंच गया। एक आम इंसान का किरदार जो सवाल पूछता है और सोचने पर मजबूर कर देता है, ये वही कलाकार है जो एक तरफ हमें हंसाता है और दूसरी तरफ समाज को आईना भी दिखाता है।

दोस्तों, हेरा फेरी फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये भारतीय कॉमेडी का गोल्डन चैप्टर है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की टिकड़ी इतनी शानदार थी कि हर सीन आज भी याद किया जाता है। और सच कहें, अगर बाबूराव नहीं होते तो हेरा फेरी अधूरी लगती। कुछ चेहरे वक्त के साथ धुंधले हो जाते हैं और कुछ किरदार यादों में खो जाते हैं, पर बाबूराव जैसा किरदार हर दौर में लोगों को हंसाता है।

श्वेता परेश रावल सिर्फ कॉमेडियन नहीं है, उन्होंने विलेन में भी ऐसा रोल निभाया कि लोग डर जाएं। अगर 90s की फिल्मों की बात करें तो उन फिल्मों में उनका निगेटिव रोल बहुत मशहूर था। फिर धीरे धीरे उन्होंने कॉमिक रोल्स की दुनिया जीत ली। फिल्म मालामाल वीकली हो या हंगामा, उनकी मौजूदगी ही फिल्म की जान बन जाती थी।

श्रोताओं, इतने शानदार अभिनय के लिए परेश रावल को कई पुरस्कार भी मिले। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड और सबसे बड़ा अवार्ड तो था दर्शकों का प्यार, क्योंकि असली कलाकार वही होता है जिसे लोग सालों बाद भी याद रखें। फिल्में बदलती रहीं, हीरो बदलते रहे, लेकिन परेश रावल हर दौर में फिट बैठते गए।

श्रोताओं, चलते चलते बस हम इतना ही कहेंगे कि हंसी की दुनिया का वो सरताज है, हर किरदार में उसका अलग अंदाज है। परेश रावल सिर्फ नाम नहीं, कॉमेडी का पूरा इतिहास है। आज का ये खूबसूरत सफर यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम हंसी का हीरो परेश रावल। तो मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अब इजाजत दीजिए अपनी रेडियो दोस्त माजिदा खान को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। ये वक्त है लोक संगीत का। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्र प्रकाश सोनवे और साथियों के गाए लोकगीत।

लोक संगीत आपकी सेवा में आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित किया जा रहा है। कलाकार हैं चंद्र प्रकाश सोनबे और साथी।

आप सुन रहे थे चंद्र प्रकाश सोनबे और साथियों के स्वर में ये लोकगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं स्वाति नाटेकर।

आज किसी ने बातों बातों में जब उनका नाम लिया, यह गजल आप सुन रहे थे स्वाति नाटेकर की आवाज़ में, संगीत भावदीप जयपुरिया का था।

स्वाति नाटेकर की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए रुद्र वीणा वादन

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे बहाउद्दीन टैगोर का रुद्र वीणा वादन रागधर रागिनी तोड़ी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए जिले की चिट्ठी। आज इसमें आप सुनेंगे हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोकेश गौर का है, वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये वो चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं हरदा जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता लोमेश कुमार गौर ने। पिछले एक महीने में जिले में क्या कुछ खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आम जनता किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, कौन सी योजनाएं आकार लेंगी, किन कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं और क्या हैं वो खबरें जो हरदा के भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। तो आइए खोलते हैं हरदा जिले की चिट्ठी और पढ़ते हैं बीते दिनों की कहानी, आने वाले कल के जुबानी। बात सबसे पहले मौसम की। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल रखने की अपील की है। नौतपा के चलते जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह कुछ राहत जरूर मिली लेकिन दोपहर बाद गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालात ऐसे रहे कि शाम तक सड़कें लगभग सूनी नजर आईं। वहीं हरदा जिले में जनगणना 2026-27 के पहले चरण का काम आज पूरा हो रहा है। 1 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रगणक घर घर पहुंचकर भवनों का विवरण दर्ज कर रहे हैं, आवास संबंधी जानकारी जुटा रहे हैं। जिले में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व पूरे उल्लास, श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और सौहार्द का संदेश दिया। भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल समस्याओं को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ग्रामीण नागरिक हैंडपंप या नल जल योजना बंद होने की शिकायत 07577223212 पर दर्ज करा सकते हैं। इसी कड़ी में हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र के 24 गांवों को फायर फाइटर पानी टैंकर उपलब्ध कराए हैं। इसका उद्देश्य गर्मी के दौरान पेयजल संकट से राहत पहुंचाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जिले में जागरूकता गतिविधियां जारी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, महाविद्यालयों में पोस्टर मेकिंग, रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किशोरियां चुप्पी तोड़ो, खुलकर बात करो का संदेश देकर सामाजिक संकोच दूर करने का प्रयास कर रही हैं। वह डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में ई ऑफिस का बेहतर और प्रभावी उपयोग सिखाया गया। अब एक महत्वपूर्ण न्यायिक खबर। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। वैवाहिक संपत्ति, मोटर दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और श्रम संबंधी मामलों की सुनवाई राज्य, जिला और मध्यस्थता केंद्रों पर की जाएगी। जिले में कुपोषण दूर करने और स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पोषण प्रहरी अभियान और विद्या आसन अभियान को समाज का व्यापक सहयोग मिलने लगा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने इन अभियानों में सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिलाया है। किसानों के लिए भी एक अहम खबर है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। किसानों का पंजीयन 15 जून तक जारी रहेगा। वहीं खरीदी केंद्रों पर उपज बेचने से पहले किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच सके। दूसरी तरफ पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए हरदा पुलिस ने कंट्रोल रूम में विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार, पारिवारिक सामंजस्य और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। और अब एक और सुखद खबर। मुख्यमंत्री दूरदर्शन योजना के तहत हरदा जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आगामी 3 जुलाई को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। यात्रा राज्य सरकार के खर्च पर कराई जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हरदा जिले की चिट्ठी में आज बस इतना ही। कल सुबह ठीक 10 बजे हम लेकर आएंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं और ये वक्त है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का। तो आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन के सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हमारे नए श्रोताओं को हमारे फ़ोन नंबर्स बता दें। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फ़ोन कर ली और अपनी पसंद के गीत सुनिए, साथ ही हमसे करिए ढेर सारी बातें। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो,
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
0: जी हाँ, स्वागत है आपका। कौन बात कर रहे हैं?
1: फूलों ने अमृत का जाम भेजा है
0: जी,
1: तारों ने गगन से सलाम भेजा है।
0: हाँ जी,
1: खुशियों भरी हो जिंदगी आपकी, यही हमने पैगाम भेजा है।
0: वाह वाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बहुत ही खूबसूरत शायरी और अंदाज भी आपका बेहतरीन है। कौन बात कर रहे हैं, हम आपका शुभ नाम जान सकते हैं?
1: मैं पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ मैडम।
0: हाँ जी, स्वागत है आपका।
1: जी शुक्रिया,
0: बहुत अच्छी शायरी आपकी। और बताइए, आज क्या गीत सुनना चाहते हैं, कौन सा गीत पसंद कर रहे हैं?
1: आज मैडम इंदौर में थोड़ा सा मौसम ने करवट ली है, हल्की बूंदाबांदी हुई है सुबह आज।
0: जी बिल्कुल, रात में भी शायद हुई थी बारिश।
1: हाँ, तो इसी से जुड़ा हुआ एक आक्रमण फिल्म का गाना है, ये मौसम आया है कितने सालों में।
0: हाँ जी, बहुत खूबसूरत गीत है।
1: इस तरह के मौसम की सभी इंतजार भी कर रहे हैं कि थोड़े बारिश हो तो हल्की ठंडक मिले।
0: हल्की ठंडक मिले, बिल्कुल। अभी नौतपा चल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, तो हर कोई इंतजार कर रहा है थोड़ी सी ठंडक का। और इस गाने के माध्यम से शायद इस मौसम के गाने को सुनकर ठंडक पहुंचे। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत फिल्म आक्रमण से।
1: शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी बताएं, कौन बात कर रहे हैं?
0: मैं राजाराम नगर देवास से राजेश सतनाल बोल रहा हूँ।
1: जी जी जी बताएं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
0: गीत आज ये परेश रावल साहब का जलंधरी में, तो दिल्ली में अर्जुन का गीत सुनवा दीजिए।
1: बिल्कुल
0: की।
1: अच्छा अच्छा जी,
0: श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि ज्यादा लंबी बात ना करें इस फोन इन कार्यक्रम में, जिससे और शामिल हो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
0: बातें और ज्यादा बात ना करें।
1: जी जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ठीक है हम आपको सुनवाते हैं। आपने जो गीत पसंद किया है उसे सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, माजदा जी को गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ मैम।
0: नमस्ते नमस्ते अरविंद जी, बिल्कुल हम आपको पहचान गए हैं। और बताएं, आज क्या खास आपकी पसंद है? और मौसम बदल गया है कि नहीं?
1: जी हाँ, थोड़ी ठंडक आ गई है। 10-8 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया है।
0: बिल्कुल, थोड़ी सी बूंदाबांदी जो हुई है उससे थोड़ी ठंडक पहुंची है।
1: जी
0: हाँ जी।
1: अब आंधी भी चली है थोड़ी।
0: बिल्कुल। और कौन सी पसंद है आज आपकी?
1: जी आज सुना दीजिए आप क्रांति फिल्म का, जिंदगी की ना छूटे लड़े,
0: लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म
1: लता
0: क्रांति का
1: मंगेशकर
0: गीत।
1: और
0: जी
1: नितिन मुकेश जी की
0: जी जी
1: आवाज।
0: जी हम आपको जरूर सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गीत। बहुत खूबसूरत गीत है और फिल्म भी बहुत अच्छी थी। चलिए लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: जी नमस्ते मैम, आपका दिन शुभ हो।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद। और आप सभी का दिन शुभ हो। जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद आपको फोन करने
1: आपकी
0: के
1: सभी
0: लिए।
1: मनोकामना पूर्ण हो।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
1: अरे कहते हैं दीदी जान, साथ आपका हो
0: जी,
1: साथ आपका हो तो हर मर्ज अधूरा लगता है, और बात आपसे हो जाए तो सब कुछ पूरा पूरा और सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है।
0: क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छी लाइन है आपने जी।
1: सुकून मिल जाता है दीदी जान। मैं बता दूं, आपने तो नाम बता ही दिया, मैं ग्राम कल्पा जिला सतना से हिंदुस्तानी कलाकार और ईडन गार्डन अशोक वाटिका से मजनू दीवाना बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी।
1: हाँ मजनू दीवाना। और मैं बता दूं दीदी जान कि हमारे गांव में शीत लहर की जो है चपेट चल रही है, ठंडे का मौसम चल रहा है, बहुत ही शीत लहर है।
0: अच्छा।
1: हाँ मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है, यहाँ तो समझ लो कि पल्ली ओढ़नी पड़ती है।
0: अच्छा, इतना मौसम ठंडा हो गया है।
1: जी जी, यहाँ 25 या 30 से ज्यादा जो है आगे पारा नहीं रहता। चारों तरफ से बाग बगीचे हैं, नदी नाले हैं और पानी रहता है
0: जी,
1: इसलिए दीदी जान मौसम बहुत ही लाजवाब रहता है। आप आइए कल पर, मजा आ जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे। और आप इतनी खूबसूरती बयान कर रहे हैं आसपास की कि बस देखने का मन कर रहा है हमारा भी।
1: अरे जम्मू कश्मीर का टुकड़ा दीदी जान, सत्य बता।
0: अरे वाह जी, क्या बात है।
1: और जहाँ मैं रहता हूँ दीदी जान, एक और बात बता दूँ, मैं अगर कोई एक मच्छर पकड़ के बता दे तो चांद की तरफ से 1,000 रुपए इनाम।
0: क्या बात है, अच्छी बात है कि आप ऐसे अच्छे माहौल में रह रहे हैं। और बताइए आज आपकी पसंद बता दीजिए हमें।
1: बस दीदी जान, अब जब बात हो ही गई है और इंदौर में फोन लग ही गया है तो फिर मजा आ जाए। वो एक फूल दो माली का गीत है और मैं एक लाइन गुनगुना लूं थोड़ा सा जल्दी से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गुनगुना लीजिए आप।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: ग्राम सोराना जिला रतलाम, शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी जी शेख हैदर खान जी, बताइए क्या हाल चाल है?
1: बस बढ़िया है मैडम, एकदम खेत में है।
0: जी जी जी खेत में है तो थोड़ा सा पानी बरस गया है, तो अब क्या स्थिति आपको लग रही है फसलों की?
1: हाँ पानी तो सुबह आया था मैडम, कोई खास तो नहीं गिरा, थोड़ी बूंदा बूंदी हुई थी।
0: अच्छा अच्छा, तो उस पर फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मतलब?
1: नहीं अभी तो कुछ सनी है
0: जी।
1: कल तो
0: जी जी
1: हाँ
0: ठीक है, अच्छी बात है, नुकसान किसी तरह का नहीं होना चाहिए। और आज आपकी क्या पसंद है?
1: आज मेरी फिल्म हीना का गीत है, लता जी की आवाज में, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया।
0: जी जी जी बिल्कुल, हीना फिल्म के सारे
1: हाँ, इसमें गीत संगीत है रविंद्र जैन का
0: जी।
1: हाँ
0: लता मंगेशकर की आवाज है।
1: हाँ
0: जी जी बहुत बहुत खूबसूरत गीत है, हम आपको जरूर सुनाएंगे। और लीजिए सुनिए फिल्म हीना का ये गीत।
1: ओके ओके थैंक यू, है ना?
0: धन्यवाद जी आपको फोन करने के लिए।
1: ओके ओके शुक्रिया
0: जी।

0: हेलो
1: हेलो, गुड
0: हेलो,
1: मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग,
0: मॉर्निंग।
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: नमस्ते जी रानू गुप्ता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ, मैं ठीक हूँ। और आपके क्या हालचाल?
0: हम लोग सभी ठीक हैं। और बताएं।
1: शायद आपसे फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही है शायद।
0: हाँ शायद जी।
1: हाँ, इसलिए
0: जी जी
1: इंदौर का मौसम तो बिल्कुल औसम ही होगा, क्योंकि हमारे देवास का ऐसे ही है खुशनुमा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुबह से तो बड़ा
1: आज
0: खुशनुमा मौसम है।
1: आज लगभग ऐसे ही है सवाल
0: अभी
1: होगा।
0: काफी दिनों की तपिश के बाद थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है सबको।
1: संडे को तो बारिश भी बताई है, अब देखो कल आती कि नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे एक गाना सुनना है, मूवी का नाम है बोलना था बोल।
0: जी जी
1: गाने के बोल है मैं हूँ गाँव की गोरी। मैं गाने तो वैसे नहीं सुनती हूँ,
0: जी
1: लेकिन ना यार दिल बोल गया। मतलब ये गाना मेरी मम्मी को भी पसंद है, इसलिए मैंने सोचा मैं सुनी लेती हूँ।
0: अच्छा। और क्या करती हैं रानू जी आप?
1: मैम मैं हाउस मेकर हूँ
0: जी
1: जी, और मेरे यहाँ प्लाई फर्नीचर प्लस किराने की शॉप है। तो
0: अच्छा अच्छा
1: हस्बैंड देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, और मेरा बेटा है वो अभी 11th में गया है।
0: अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात
1: IIT
0: है।
1: की तैयारी कर रहा है वो।
0: जी जी
1: हाँ जी, अर्जुना से। हाँ
0: बहुत अच्छी बात है, आप सहयोग कर रही हैं आपके परिवार के लिए, और घर
1: जी
0: का काम भी करती हैं। हाउसवाइफ होना ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, सबसे ज़्यादा बिजी तो हाउसवाइफ ही होते हैं।
1: हाँ
0: क्योंकि
1: होते हैं, लेकिन फिर भी
0: क्योंकि
1: देखो
0: हम
1: हम घर
0: घर के
1: में
0: साथ साथ बाहर का काम भी कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं जिनको हम बखूबी कर पाते हैं। और
1: जी
0: आप
1: सही
0: लोगों
1: बात
0: में,
1: है।
0: हाँ महिलाओं में ही एक ये खूबी होती है कि दोनों ही काम को
1: नहीं,
0: बराबरी से अंजाम देती
1: परेशान
0: रहती हैं। और
1: तो बेचारे जेंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है,
0: हाँ
1: लेकिन ये है
0: लेकिन ये
1: कि
0: होता है कि वो
1: देखो।
0: दोनों काम को मैनेज कर लेती हैं,
1: हाँ बस
0: बच्चों को
1: दोनों को
0: देख
1: मैनेज
0: वो
1: करना
0: साथ
1: पड़ता
0: साथ
1: है, सही
0: घर के
1: बात
0: कामों
1: है ये
0: को,
1: तो
0: और अगर जॉब कर रही
1: जी।
0: होती है तो उनको भी मैनेज करना ही होता है सारी चीज़ों
1: आप
0: को।
1: जैसे आप भी आई हैं, तो देखिए आप घर का काम निपटा कर ही आई होंगी, इतना तो
0: हाँ
1: मुझे
0: बिल्कुल,
1: यकीन
0: वो तो सभी को
1: है।
0: जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी ही होती है,
1: हाँ
0: परिवार का
1: वही
0: भी हमारा दायित्व बनता है और उस दायित्व को
1: जी।
0: हमें पूरा करना होता है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बोल राधा बोल कही गीत जो
1: ओके
0: आपने
1: नमस्ते
0: पसंद
1: मैम।
0: किया है। नमस्ते रानू जी।

0: दिनेश पड़ियार बोल रहा हूँ मैडम, उज्जैन जिला ग्राम मसवाड़िया से।
1: जी जी जी दिनेश जी, और क्या हाल चाल है आपके?
0: बढ़िया है मैडम।
1: अच्छा, क्या कारोबार करते हैं आप?
0: ये कारोबार तो क्या है मैडम, खेती का है अपना।
1: अच्छा अच्छा, खेती सबसे बड़ा काम है। देखिए
0: ये तो है मैडम,
1: ये हमारा बहुत बड़ा काम है, किसान तो एक अन्नदाता है। है ना?
0: हाँ,
1: तो ये काम भी बहुत बड़ा है, काम है। तो अभी क्या लगाया हुआ आपने खेत में इस समय?
0: ये मैडम अभी तो खाली पड़ा है।
1: अच्छा,
0: गेहूँ वगैरह था, उसके बाद में अभी खाली है। अगली फसल के लिए तैयारी चल रही है, सोयाबीन वगैरह लगाएंगे फिर।
1: जी जी, तैयारियां चल रही हैं आपकी। जी
0: हाँ, तो आप... आज तो सुबह गर्मी बहुत थी और आज तो सुबह पानी थोड़ा सा गिर गया।
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो थोड़ी राहत मिल गई है।
1: बिल्कुल, सभी दूर से यही खबर है कि मौसम के थोड़ा सा बदलने से राहत मिली है, मौसम ने जो करवट ली है उसे ठंडक पहुंची है। जी
0: हाँ,
1: अभी आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: तो ये मैडम सरारी फिल्म का सुनना है।
1: जी कौन सा?
0: ये मंजिल अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह, किशोर कुमार की आवाज में है।
1: बिल्कुल, किशोर कुमार की आवाज में हम आपको जरूर सुनाएंगे शराबी फिल्म का गीत, लीजिए सुनिए।
0: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, बिल्कुल।

0: हेलो हेलो,
1: हाँ मैडम नमस्कार।
0: नमस्ते। एम एच हॉटलाइन में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं

0: हेलो हेलो
1: जी मानिका जी नमस्कार, मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जी डोंगर गाँव महू से।
0: जी जी डोंगर गाँव महू से बात कर रहे हैं विवेक जी।
1: हाँ जी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से।
0: जी जी जी
1: ये डोंगर गाँव में है, ग्रामीण क्षेत्र है, ये महू के अंदर आता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और माजी दादी आज सुबह सुबह थोड़ी बारिश हो गई है तो बड़ा अच्छा खुशमिजाज मौसम हो गया है।
0: जी जी जी बिल्कुल
1: है ना। हालांकि माजी दादी एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी पानी ऐसे गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं बाद में दिक्कत होगी, ऐसा लोगों का कहना है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी।
1: तो मौसम अच्छा है कि बाकीदा का गाना याद आ रहा है, मौसम में आती गाना, ये गाना आप सुनवा दें।
0: बिल्कुल हम आपको सुनाएंगे, आपका रेडियो सेट से थोड़ा सा दूर आ जाए।

0: तो आपकी आवाज हमें बहुत अच्छी सुनाई देगी जी।
1: नहीं नहीं माजिदा जी, आपके ही वहाँ से कुछ है, मैं तो आपका नियमित श्रोता हूँ, रेडियो बंद ही है।
0: अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल, आप नियमित श्रोता हैं और हमारी आपसे कई बार बात भी हो चुकी है।
1: और मैं आपको बताऊँ माजिदा जी, मेरी आवाज भी मुझे ही रिकॉर्ड मिल रही है।
0: अच्छा अच्छा,
1: वहीं से कोई दिक्कत जी, वहीं से कोई दिक्कत है।
0: चलिए चलिए कोई नहीं, आप बताएं बागीचा फिल्म का गीत।
1: मौसम है आशिकाना।
0: मौसम है आशिकाना, बिल्कुल
1: जी।
0: बहुत ही फेमस फिल्म थी और बहुत ही खूबसूरत गाने थे इस फिल्म के, सारे ही गाने बहुत
1: तो
0: फेमस और खूबसूरत गाने थे।
1: सारे गाने बहुत अच्छे थे माजिदा जी, और मैं आपको बताऊं ये फिल्म बनने में 20 साल लग गए थे
0: जी
1: है
0: जी
1: ना, तो जिसके जो संगीतकार थे गुलाम मोहम्मद
0: जी,
1: वो इस फिल्म और इस म्यूजिक की सक्सेस नहीं देख पाए, बड़ी दुख की बात है। तो बाद में जो दो गीत थे
0: जी
1: वो नौशा साहब ने उनकी तर्ज बनाई थी, जिसमें से एक गाना था राजकुमार, राजकुमारी की आवाज में था, नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, और एक और कोई गाना था, ऐसे दो गाने थे
0: जी जी जी जी बिल्कुल सही
1: जी।
0: फरमा रहे हैं आप। और ये
1: हाँ जी
0: आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा का गीत, और मौसम का आनंद लीजिए और सुनिए फिल्म पाकीज़ा का गीत।
1: धन्यवाद, नमस्कार,
0: धन्यवाद आपको फ़ोन करने के लिए।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: मैम, जय श्री महाकाल।
0: नमस्ते जी।
1: जी मैम, शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ। मैम
0: विदिशा से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं?
1: शिवा लोहट मैम।
0: शिवा लोहट जी।
1: जी मैम,
0: और बताएं विदिशा में कैसा मौसम है अभी?
1: मैम मौसम तो अभी धूप निकली हुई है, बहुत तेज धूप पे है और गर्मी बहुत ज़्यादा है मैम।
0: अच्छा
1: जी।
0: फिर
1: गर्मी काफ़ी तेज है मैम, तो कृपया करके पक्षियों का और गायों का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को
0: जी।
1: हम लोगों को उनके पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। जी मैम,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ साथ हमें पशु पक्षियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस गर्मी के मौसम में। आप कौन सा किस

0: सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, गाना भी सुनूंगा। मैम मैं एक और बात कह रहा हूँ, जैसे कि वर्षा ऋतु आने वाली है
0: जी,
1: तो सभी लोगों को पौधरोपण जरूर करना चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं गर्मी का प्रभाव कम होगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जिससे कि गर्मी का प्रभाव भी कम हो, हमारे पर्यावरण में सहयोग मिले। जी
1: जी मैम, मूवी का नाम है हमको दीवाना कर गए
0: जी,
1: और गाने के बोल रहेंगे, फुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे।
0: जी बिल्कुल, हम आपको ये गीत सुनवाएंगे। आप क्या करते हैं?
1: मैम मैं एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ
0: जी,
1: और घर पे रहता हूँ और साथ ही साथ
0: गाने सुनते हैं। ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, फिल्म का नाम है हमको दीवाना कर गई। लीजिए सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
1: धन्यवाद
0: जी, नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्ते, एमएच हॉटलाइन में आपका स्वागत है।
0: आप बिल्कुल, मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ मैम।
1: जी बिल्कुल, आप हमारे बिल्कुल नियमित श्रोता हैं, हमें पत्र भी बराबर लिखते रहते हैं। आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: आपका कार्यक्रम भी सुना था, स्थापना दिवस का आपने, विजय मैडम ने संचालन किया था और आप बिल्कुल उस कार्यक्रम में थी।
1: जी जी जी जी, धन्यवाद जी।
0: हिमेश लाइट वाला जो प्रोग्राम था ना,
1: जी जी जी,
0: बहुत अच्छा लगा। उसकी प्रतिक्रिया भी लिखी मैंने, वो मंच मुझे अभी भी अदृश्य ऐसा लगा।
1: जी।
0: गाने की याद आ गई कि विविध भारती से अपन बाहर नहीं जा सकते, जीना तेरी गली में, हमें भी
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब श्रोता हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं और सराहते हैं, पसंद करते हैं, तो हमें और मोटिवेशन आता है कि हम और अच्छा कुछ आपके लिए करें, श्रोताओं के लिए करें। जी
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं मैडम। आपका प्रयास, वो मंच नाटक का प्रस्तुति थी ना
1: जी,
0: तो संवाद का जो बांधा हुआ था, एक तो बस वाली
1: जी जी जी,
0: आकाशवाणी की बस निकल गई और वो हेलो हेमेट लाइन का जो
1: जी जी जी,
0: मतलब छोड़ के जा रही हूँ।
1: जी जी जी जी जी
0: जीना मैम, मुझे आज जीना तेरी गली में गाना सुनना है।
1: जी जी,
0: गाने के बोल हैं
1: जी,
0: ये आ रंग भरे प्यारे मौसम और प्यारे अल्फाजों में, सुने हम अपने दिल की आवाज अपनी आवाजों में।
1: बिल्कुल, ये प्यार के रंग भरे हैं ना।
0: हाँ, ये रंग प्यार के रंग भरे,
1: जी जी जी,
0: प्यारे अल्फाजों में
1: सुने
0: हम दिल की बातें अपनी आवाजों में। तो आज हम आप और आप सुना रही हो, मैं सुन रहा हूँ आपके दिल की, मेरी दिल की बात आपने सुनी और आप इस गीत

0: को सुना रही है
1: जी जी
0: जी, बहुत अच्छा लगा
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: आप सब पूरे परिवार विविध भारती परिवार को एमएच हेडलाइन के सभी उद्घोषिका उसी को मेरे ईद की मुबारकबाद।
1: जी जी, आपके परिवार को भी बहुत मुबारकबाद और हम आपकी पसंद पूरी करते हैं और सुनवाते हैं जीना तेरी गली में फिल्म का ये गीत जो आपने पसंद किया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मैम,
1: शुक्रिया फोन करने के लिए
0: आपको।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते
0: नमस्ते जी
1: जी मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी नागदा जिला उज्जैन से बात कर रहे हैं,
1: कैसे हैं आप?
0: जी बहुत अच्छे हैं, हम सभी अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा है और आप सभी श्रोताओं का साथ है हमारा। बताएं।
1: जी बिल्कुल, हमारा तो आपका पाने को हमने अपना परिवार समझ रखा है।
0: बिल्कुल है ही, आप हमारे परिवार के ही हिस्से हैं।
1: कहते हैं ना, आकाशवाणी तभी सोता है और सोता है तो आकाशवाणी का परिवार है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी।
1: आज सुबह से हमारे यहाँ पे मतलब हल्की बारिश भी हुई है और बहुत तेज हवाएं भी चल रही है।
0: जी जी जी
1: मौसम बड़ा अच्छा है। अभी आपने गाना सुनाया था ना, मौसम है आशिकाना, ऐसा मौसम हमारे यहाँ पे हो रहा है अभी।
0: बिल्कुल, किसी श्रोता की पसंद पर भी हमने ये गाना आपको सुनवाया था। आज आपकी क्या पसंद है?

0: हमें आए दिन बाहर के
1: जी
0: गाने के बोले ये कली जब तलक फूल बन के खिले,
1: इंतजार करो जी। अच्छा खूबसूरत सा गीत है, बिल्कुल हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ही गाना
0: जी। बिल्कुल।
1: और आप रेडियो सुनते हैं?
0: जी हाँ, मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सुनता हूँ आकाशवाणी इंदौर के। और खेती किसानी का काम करता हूँ।
1: जी जी, खेती किसानी के साथ साथ गानों का लुत्फ लेते रहते हैं। और आज तो खेत में बड़ा अच्छा मौसम लग रहा होगा आपको, ठंडी ठंडी हवा वाला।
0: जी बिल्कुल, हवा चल रही है और अभी मैं खेत पर ही आया हूँ
1: जी,
0: और कार्यक्रम मोबाइल पर सुन रहा हूँ आपके।
1: बिल्कुल, हम आपकी पसंद पूरी करते हैं और आप बढ़िया ठंडी हवा का आनंद लेते हुए सुनिए ये गीत जो आपने पसंद किया है।
0: जी थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।

0: इस गीत के साथ ही एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अपनी रेडियो दोस्त माजिदा खान को नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पर्यटन के बदलते आयाम के बारे में। गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं और काफ़ी सारे लोग घूमने का, कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इन सब का क्या मकसद है, क्या इनके फ़ायदे हैं, इस विषय पर हम आप सभी की राय लेंगे और सुनवाएंगे कुछ मन पसंद, हमारी पसंद के गीत। तो चलिए कॉल कीजिए 2660902 पे और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल्स का। हेलो हेलो
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
1: जी फोन करेगी सुने हैं
0: जी? हाँ नहीं, बात आपकी गीत हमारे,
1: बात आपकी गीत हमारे हैं।
0: आज हम किसी विषय पर आपसे बात करेंगे और फिर सुनवाएंगे अपनी पसंद का गीत।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए क्या शुभ नाम है आपका?
1: हमारा नाम गिरधारी सेन है।
0: गिरधारी
1: सेन?
0: कहाँ से, कहाँ से बोल रहे हैं गिरधारी जी?
1: दमोह से बोल रहे हैं मैडम।
0: दमोह से? अच्छा, तो फैमिली में कौन कौन है?
1: फैमिली में बच्चे हैं हमारे दोनों।
0: अच्छा, और कितने बड़े बड़े हैं आपके बच्चे?
1: अभी 12th पास हुआ है लड़का।
0: हाँ,
1: तो कॉलेज में जा रहा है। बच्ची अभी 10th पास हुई तो 11th क्लास में जा रही है।
0: अच्छा, चलिए, तो कहीं घूमने का प्लान बनाया है कि नहीं आपने?
1: घूमे आए मैडम।
0: अच्छा, घूमा है? कहाँ पर घूम कर आए?
1: 2-3 जगह हुआ है, जो उज्जैन हो गया है।
0: हाँ
1: हाँ, और यहाँ पे अभी मैहर से लौटी है।
0: चलिए बढ़िया, तो हम यही बात करना चाह रहे हैं कि जो अपन पर्यटन के लिए जाते हैं
1: जी,
0: पर्यटन के लिए जाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है?
1: अब उसमें क्या है कि मैडम जी, अब गर्मियों की छुट्टी भी चल रही है, बच्चों का एंजॉय हो जाता है।
0: हाँ,
1: और का, और घूमने फिरने में थोड़ी क्या है कि अपने यहाँ से हट के दूसरे जगह वहाँ का माहौल भी अपना वो आ जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि है ना, हम लोगों का जो मन है वो भी इतने सुंदर दृश्य देख के थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, रिचार्ज हो जाता है
1: जी,
0: है ना, परिवेश बदलने से, माहौल बदलने से, सुंदर सुंदर नज़ारे देखकर। बस इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो गिरिधर जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने कॉल किया, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा और कल अपना प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। ठीक है, नमस्ते।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ जी
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी कौन बोल रहे हैं
0: बुरहानपुर से सलीम, बुरहानपुर
1: जी?
0: से सलीम बोल रहा हूँ।
1: बुरहानपुर से सलीम जी। सलीम जी क्या हाल है?
0: अच्छे हाल है आपके? बोलो मैडम, बहुत
1: हम
0: दिनों से सुन रहे थे तो मैंने कहा आज लगा के देखो,
1: अच्छा।
0: आपका कार्यक्रम बहुत।
1: हाँ तो ये बताइए सलीम।

0: कि फैमिली में कौन कौन है आपके?
1: हमारी फैमिली में दो भाई है,
0: हाँ
1: सात भतीजी है, एक भतीजा है।
0: अच्छा, तो कहीं घूमने उमने जाते हैं कि नहीं जाते आप?
1: जाते मैडम, मैं तो नाबीना हूँ मैडम, मेरे को दोनों आंखों से नहीं दिखता।
0: अच्छा, लेकिन है ना, महसूस तो कर सकते हैं आप,
1: हाँ मैडम,
0: है ना? तो बस यही जानना था कि जो हमारे पर्यटन हैं उनके बदलते आयाम क्या हैं, हम लोग क्यों घूमना पसंद करते हैं कहीं भी अपने घर से बाहर जाकर, थोड़ा सा बाहर की वादियों।
1: मैडम इसलिए घूमना पसंद करते हैं कि वहाँ वातावरण साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए।
0: हाँ,
1: हाँ, गंदगी साफ होना चाहिए बिल्कुल, और माहौल अच्छा होना चाहिए, भाईचारा
0: बिल्कुल। और
1: एका।
0: आज जो पहले हम लोग घूमते थे और आज के घूमने में कुछ तो फर्क आया है ना? अब ज्यादा आसान हो गया है या कठिन है? आप क्या कहना
1: नहीं
0: चाहते हैं?
1: मैडम, आसान तो हो गया, पर क्या है कि अभी भी जैसे कुछ परेशानी जाने में लगती है
0: जाने में, बल्कि अब आसान हो गया, सबके पास
1: ना
0: स्मार्टफोन है।
1: मैडम। अपन जैसे बाहर जाओ,
0: हाँ
1: बाहर के पर्यटन में तो ट्रेनों में इतनी गर्दी रहती कि मैं बता नहीं सकता।
0: हाँ लेकिन पहले की तुलना में अब अपन
1: वहाँ पहले से आसान हो गया
0: पहले से
1: जाना।
0: काफी आसान हो गया है। हमारी बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से हमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती हैं। हम अपने होटल्स की बुकिंग कर लेते हैं, ट्रेन की
1: ये
0: बुकिंग
1: बात तो सही
0: एडवांस में
1: बात
0: कर
1: है,
0: लेते हैं, और गूगल मैप के जरिए हम अपना रास्ता भी चुन लेते हैं आसान तरीके से, है ना?
1: मैडम।
0: जी। चलिए समीर सलीम जी,
1: हेलो
0: आपका, हाँ
1: मैडम,
0: जी,
1: आपका नाम क्या है?
0: कविता रावत।
1: सविदास।
0: चलिए
1: चलो
0: सलीम
1: ठीक
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया।
1: है, आपका भी धन्यवाद। बॉय पहली बार लगाया मैडम, बहुत दिनों से सुन रहा था रेडियो, मैं सुनता
0: चलिए,
1: रहता हूँ, तो मैंने
0: बिल्कुल
1: कहा आपको
0: आपका
1: लगाया एक
0: हमेशा
1: बार।
0: लगेगा, आप ट्राई किया करिए, और
1: हाँ
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी।
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम
1: आरती भारद्वाज।
0: आरती भारद्वाज।
1: हाँ
0: आरती जी आपने कॉल 1 हफ्ते बाद ही किया होगा ऐसी उम्मीद करती हूँ।
1: नहीं, बहुत दिन, करीबन 3-4 महीने हो गए
0: चलिए कोई
1: ना।
0: बात नहीं। एक्चुअली 1 हफ्ते के अंदर हम दोबारा कॉल नहीं ले पाते हैं अपने लिसनर्स का, इसलिए
1: कैसे
0: कोई
1: लगाई,
0: बात।
1: फरवरी में लगाई थी।
0: अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हेलो,
0: कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बुरहानपुर से।
0: अच्छा, बुरहानपुर से हैं आप भी?
1: हाँ,
0: अभी हमारे जो
1: बुरहानपुर।
0: श्रोता का कॉल आया था सलीम जी का, और वो भी बुरहानपुर से थे, तो बुरहानपुर की लाइन आज काफी क्लियर है ना फोन
1: मैंने
0: कॉल
1: दो
0: से
1: बार
0: जी।
1: लगाई थी, 2 बार पहले लगाई लगा चुकी हूँ,
0: अच्छा।
1: और दो
0: आरती
1: दिन में
0: जी
1: तो
0: क्या
1: लगी है।
0: करती हैं
1: मतलब
0: आप?
1: कुछ नहीं, घर का काम, वो खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत आ जाते हैं, बाड़ी वगैरह लगाते हैं।
0: अच्छा। फैमिली
1: अभी
0: में
1: ऊपर
0: कौन
1: में
0: कौन
1: क्या
0: है, और आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं?
1: मेरे सास ससुर देवर देवानी ननद, हाँ सब है।
0: अच्छा।
1: दो लड़कियां हैं।
0: तो आरती जी कहीं घूमने जाती हैं आप पर्यटन के
1: हाँ,
0: लिए?
1: अभी आए घूम के, तो अभी गए थे मायके।
0: अच्छा। तो
1: पहले भोपाल से उधर साइड में पड़ता, नर्मदापुरम जिले में शिवनी
0: हाँ
1: बनपरा।
0: हाँ अच्छा। तो कैसा लगता है आपको, मतलब इसके अलावा भी आपने कहीं जो सुंदर सुंदर वादियां हैं, अच्छे अच्छे दृश्य वाली जगह जो होती हैं घूमने के हिसाब से, वहां भी घूमे हो?
1: हाँ, बहुत घूमने की जगह हमारे यहीं पे बुरहानपुर में ही।
0: ये बात सही है। कैसा लगता है आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा घूमने लायक बहुत जगह है। आशीर्वाद का किला है, हम मतलब यहाँ रहते हैं, वहाँ 12 मंदिर है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग बनी है नागझिरी घाटे।
0: हाँ।
1: तो वहाँ भी रोज शाम को जाते घूमने।
0: ऐसा
1: आपके
0: लगता है
1: वहाँ?
0: आपको कि है ना, घूमने से मतलब पर्यटन से हमें कई लाभ होते हैं, हमारी दिनचर्या में बदलाव आता है?

0: होता है ना
1: मुझे तो
0: ऐसा।
1: अच्छा लगता
0: जी, चलिए आरती जी,
1: है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं प्रतिदेव जी बात करना चाह रहे थे।
0: हाँ जी बिल्कुल, करवाइए।
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते,
2: बोलिए।
0: आप बोलिए, हम तो सुन रहे हैं आज।
2: टॉपिक पे बोले वही तो आप बोलोगे तो बोलेंगे।
0: आप ये बताइए कि पर्यटन के कुछ लाभ हमको मिलते हैं या नहीं मिलते? हम घूमने जाते हैं तो हमारा मूड थोड़ा रिफ्रेश होता है या नहीं होता है?
2: बिल्कुल
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा
2: ठीक है, धन्यवाद।
0: जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्कार। कौन
1: जी, नमस्कार।
0: बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ,
0: पूरा नाम?
1: राकेश कुमार बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: अच्छा, पहले भी आपसे बात हो चुकी है?
1: नहीं, मैं तो दो हफ्ते के बाद कॉल लगाया आपके पास।
0: अच्छा,
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: इसके पहले कभी बात हुई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज़ सुन के कि आपसे मैं बात कर चुकी हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप कर चुकी है, क्योंकि जैसे कि आपका जो नियम होता है 10 दिन का, तो मैं 2 हफ्ते के बाद कॉल लगाया था,
0: बहुत
1: इसलिए कॉल
0: अच्छी
1: लगाया।
0: बात, बहुत अच्छी बात। राकेश जी,
1: जी
0: आज का जो हमारा विषय है वो है पर्यटन के बदलते आयाम।
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: उस बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जो पर्यटक जो है बदलते जो राय, तो जैसे कि इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल जो पर्यटक जो आते हैं हम कहीं भी, उनकी बदलती राय ये होनी चाहिए कि जैसे आप कहीं भी घूमने जाए, अगर मानो कि अगर आप शिमला आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटक स्थल है, वो तो आप सभी जानते हैं, तो अगर आप पर्यटक अगर आप घूमने आए, तो आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को एक नियम बनाना चाहिए इसके ऊपर, कि जो जो पर्यटक आए, तो अगर वो कहीं वो है तो है, नियम पर मानते नहीं है, जैसे कि कोई पर्यटक आए, अगर कूड़ा कवाड़ा कचरा जो है हर कहीं फेंक देते हैं, तो उन पर जो है जुर्माना होना चाहिए पर्यटक पर।
0: देखिए, हाँ वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने तो काफ़ी नियम बनाए हैं, लेकिन उसे मानना ना मानना ये तो हम आम इंसानों के हाथ में
1: आम इंसान
0: है
1: था
0: ना।
1: कि अब
0: एक
1: देखो,
0: व्यक्ति।
1: जैसे कि मानो कि मैं आपके क्षेत्र में हूँगा, तो मैं आपके क्षेत्र में कूड़ा कचरा फेंक दूंगा, तो हम सोचेंगे अरे चलो हमने क्या है, हम आज के दिन आने हैं, कल हम चले जाएंगे अपने एंजॉय करके,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: हम ये सोच नहीं रखने की हम आज के दिन आए, हम तो मेहमान की, क्योंकि ये भारत देश हमारा, ये अकेला नहीं, जैसे कि अब ये मध्य प्रदेश का भोपाल, ये मध्य प्रदेश ये आपका नहीं है, ये आपके क्षेत्र का नहीं है, पूरे भारत का हिस्सा है।
0: एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा भारत हमारा है और उसकी देखभाल करना, उसे स्वच्छ
1: देखभाल
0: रखना हम
1: करना
0: सबका
1: सबका
0: कर्तव्य है।
1: कर्तव्य है, जैसे कि अगर आप हिमाचल आते हैं, तो ये हिमाचल है, ये हिमाचल वासियों का, ये ही पूरे भारत का है,
0: बिल्कुल
1: पूरे भारत का
0: बिल्कुल
1: हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से तो आदमी की क्या बोलते जान बचती, क्योंकि पूरे, अब देखो अभी थोड़ी सी बात है, अभी पूरे देश में जो है लू चल रही है, 40-45 फुट तक जो है तापमान
0: हाँ।
1: चल रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं हिमाचल या जम्मू कश्मीर घूमने आते हैं गर्मी के लिए, तो
0: बिल्कुल
1: अगर हम उसी घर में अपने घर में आ रहे हैं, अपने देश में घूम रहे हैं, तो हम अपने देश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम
0: बिल्कुल
1: ऐसा अपने
0: बिल्कुल,
1: देश के
0: आपकी
1: साथ ऐसा
0: बात
1: करने
0: जन
1: चाहिए।
0: जन तक पहुंचेगी, और जो ओ इस टाइप का कुछ अगर करते भी हैं तो वो नहीं करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। पूरा
1: जी,
0: भारत
1: मैं
0: हमारा
1: समझता
0: है,
1: हूँ,
0: उसकी सुरक्षा, उसकी स्वच्छता का ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा।
1: जो
0: ठीक
1: आकाशवाणी
0: है?
1: भोपाल सुन रहे हैं, जो पूरा जो देश सुन रहा है, तो आप हिमाचल आए, कृपया करके आप स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखिए, आप
0: हिमाचल जाएं
1: पूरा
0: या कहीं भी
1: कचरा।
0: जाएं, स्वच्छता का ध्यान हम सबको रखने की बेहद आवश्यकता है, तभी
1: जी
0: हम
1: जी
0: अपने भारत को स्वच्छ रख पाएंगे। ठीक है
1: स्वच्छ रख
0: ना?
1: पाएंगे।
0: और
1: जी जी
0: स्वच्छ
1: जी
0: रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे।
1: जी जी जी
0: ठीक है
1: जी जी
0: राकेश जी, बहुत

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: मंजरी मंजरी भोपाल जी
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश में ही आप बाद कर रहे हैं।
1: जी कारीचरण यादव बोल रहा हूँ, संदलपुर से। कारीचरण
0: क्या नाम बताया आपने?
1: यादव संदलपुर से, हाँ जी, पास गाँव मेरा, मिला
0: कालीचरण
1: बात।
0: यादव।
1: हाँ जी, कारीचरण यादव, ग्वालियर पास गाँव मेरा
0: अच्छा।
1: जी। मेरे गाना सुनना, फोन करके उसने कार्यक्रम में।
0: देखिए, आप है ना, आज जो कॉल लगाए हैं वो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। तो आज हम सिर्फ आपसे बात करेंगे, आपकी राय जानेंगे, आपसे अपने विचार साझा करेंगे और गीत आज हमारी पसंद के होंगे।
1: जी
0: ठीक है, तो कालीचरण जी, ये बताइए कि आप घूमने जाते हैं बाहर कहीं अपनी फैमिली को लेकर, आउटिंग के लिए,
1: घूमने जाते घूमने बसता मैडम मेरे को।
0: पर्यटन के लिए जाते हैं, तो वहां जाके आपको क्या लगता है? कुछ आपको मन आपका खुश होता है वहां जो अच्छी
1: मेरे को
0: अच्छी
1: पता चला था घूमने बाहर जाने ऐसा लगता है कि घूमते रहो, घर घर पर नहीं जाओ।
0: ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
1: नहीं,
0: घर तो
1: मेरे को
0: रहना
1: पता
0: बेहद
1: चला था कि
0: जरूरी।
1: घर जाओ तो
0: हाँ
1: पता चला था मेरे को।
0: हाँ कहाँ कहाँ घूम चुके हैं आप?
1: मैं तो कानपुर वगैरह घूम आया, दिल्ली दिल्ली अरे अरे फरीदाबाद या से इधर गया था।
0: अच्छा, तो वहाँ कभी आप ऐसा
1: मैंने
0: पहाड़ों पर खूबसूरत वादियों के बीच में गए
1: पार
0: हैं?
1: नहीं, मैंने पार कहा इधर
0: नहीं, पहाड़ उधर नहीं है, पर किधर तो होंगे ना, कहीं तो गए होंगे कि नहीं गए?
1: पहाड़ की तरफ, इधर है गांव, इधर पड़ती है गांव में, उधर हमारे पास में उधर पहाड़ है, चरिया में घूमने के लिए।
0: तो गए हैं आप? आपको
1: हाँ,
0: कैसा
1: बहुत अच्छा
0: लगता है
1: लगता
0: वहां
1: है
0: पर
1: मेरे को,
0: जाकर?
1: बहुत अच्छा लगता है। खुली हवा मिलती है, ठीक ठंडक मिलती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, मंदिर भी चल गई थी। हाँ, अच्छा लगता है।
0: चलिए
1: मैडम,
0: कालीचरण,
1: आप कौन बोली मैडम?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: अब आप आपकी आवाज अच्छी है बहुत।
0: अच्छी है, धन्यवाद।
1: नहीं, सुनता रहता हूँ।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल अपना
1: आप
0: प्रोग्राम
1: मेरा
0: सुनिएगा,
1: जी
0: कल अपना प्रोग्राम सुनिएगा आप, ठीक
1: मैं
0: है?
1: कौन नाम बुलवा दी मैडम, ढाई नाम बुनने हमारे आप परमाणु कार्यक्रम में,
0: बोल
1: आप
0: दीजिए।
1: पूछिए ना। हमारे नाम ग्वालियर से 45 साल पुराना सोता हूँ ग्वालियर का। मैं
0: जानते
1: पहुंच
0: हैं।
1: रहे, मेरे पत्र मिलने दे मेरे को, जब ग्वालियर से लेता हूँ तो मिलने दे, भोपाल पहुंच रहे मेरी।
0: ठीक, चलिए, ओके।
1: हमारे नाम बोलने 2:30 बजे, अरे
0: आपका नाम आएगा ना कल, आप प्रोग्राम सुनिएगा 11 बजे
1: परमा
0: से।
1: परमा से बोल दे, प्रोग्राम आल परमा, चार नाम
0: बिल्कुल
1: नाम
0: बोलेंगे हम।
1: बोलिए।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: हेलो, फोन करें गीत सुने दीदी। नमस्कार जी
0: नमस्कार। फोन करें गीत सुनने नहीं, बात आपकी गीत हमारे।
1: दीदी। दीदी हम ग्रामा पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से दीदी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं
0: मेहरबान सिंह।
1: जी। दीदी
0: मेहरबानी है आपकी, कॉल किया आपने।
1: बड़ी मुश्किल में कॉल लगती दीदी। कार्यक्रम सभी सुनते हैं आकाशवाणी भोपाल के,
0: ये
1: बहुत
0: तो बात
1: बचपन से
0: सही है।
1: रेडियो का शौक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं।
1: जी
0: मेहरबान
1: गुरुदेव, हम
0: सिंह
1: तो
0: जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज का विषय है कि पर्यटन के बदलते आयाम क्या है, उसका उद्देश्य, हम जब घूमने जाते हैं तो मन में क्या विचार आते हैं, ये बताइए, क्या क्या लाभ हैं उससे हमें।
1: पटल जाते हैं दीदी।
0: बताइए ना, आप जाते हैं कहीं घूमने,
1: हाँ
0: तीर्थ
1: दीदी,
0: यात्रा पे गए।
1: जब हाँ समय समय जब समय मिलता है तो बिल्कुल जाते हैं, लेकिन अभी तो टाइम मिला नहीं, तो अभी तो नहीं जा पाए हैं।
0: इस बार नहीं जा पाए होंगे, लेकिन वैसे तो कभी गए हैं ना, तो क्या फर्क दिखता है आपको? आप पहले भी जाते थे और अब भी जाते हैं, तो क्या फर्क महसूस होता है आपको?
1: देखिए दीदी, जाते तो हैं और घूमते हैं, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और घूमने भी चाहिए।
0: बिल्कुल, देखते ऐसा होता है ना, जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो थोड़ी सी कभी कभी बोरियत होने लगती है, और जब कुछ समय के लिए हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा नयापन आता है, बदलाव आता है ना? बिल्कुल।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत।
0: और अब नए आयाम में यह फर्क बहुत आया है कि जैसे पहले हम लोग है ना, कहीं बाहर जाते थे तो बहुत सारा पैसा रख के ले जाना पड़ता था, फिर उसकी हिफाजत करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी कि अरे पैसा रखा है, पैसा रखा है पास में, कहीं निकल ना जाए, कहीं कोई निकाल ना ले, है ना?
1: जी जी
0: आजकल
1: बिल्कुल
0: ये हो गया है, सबके पास है ना, सब पेटीएम गूगल पे यूज़ करते हैं, तो आसानी से कहीं भी कैशलेस होकर जा सकते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
0: फ़ोन के ज़रिए पेमेंट करते हैं, छोटे छोटे पेमेंट भी करना होता है तो लोग अधिकतर फ़ोन के ज़रिए ही करने लगे हैं, तो ये काफ़ी सुविधाजनक हो गया है हम सभी के लिए।
1: जी बिल्कुल, ये तो बात हकीकत है दीदी, क्योंकि अब तो पहल पहल से सुविधा बहुत हो गई है, क्योंकि अब तो
0: बिल्कुल।
1: मोबाइल लेन देन में आसानी हो रही, कहीं भी अपन कैश ले सकते हैं।
0: हाँ, हम दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से हम सारे अपने लोगों से संवाद भी कर पाते हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: हकीकत में,
0: ठीक है, चलिए बस।
1: आध्यात्मिक विचार दिया आपने दीदी। और जो आप दीदी, हम जो कहना पूछना चाह रहे थे, कौन दीदी बात कर रही हैं?
0: कविता रावत।
1: जी कविता जी, आपसे शायद हमारी दूसरी बार बात हो रही हो। जो जो आप लोग बड़ी मेहनत से बातचीत करते हैं, अच्छी प्रस्तुति रहती है आप लोगों की।
0: जी, थैंक यू वेरी मच मेहरबान सिंह जी, और
1: जी
0: एक
1: जी
0: हफ्ते
1: जी
0: बाद
1: धन्यवाद।
0: दोबारा कॉल कीजिएगा। जी
1: जी बिल्कुल, जरूर लगाएंगे, हम तो सुनते रहते हैं कार्यक्रम, आप
0: जी
1: लोगों की बातचीत अच्छी लगती है दीदी हमें।
0: जी धन्यवाद,
1: धन्यवाद दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार मैम, कैसे हो?
0: हम अच्छे हैं। पहले आप अपना शुभ नाम तो बताइए और कहाँ से
1: हाँ,
0: बोल
1: मैं
0: रहे हैं।
1: कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ। मैं मनमोह जी।
0: नियाज मोहम्मद
1: हाँ
0: जी,
1: जी, फरमाइए मैम, कैसे याद कर
0: हम तो
1: रहा?
0: अच्छे हैं। आप बताइए कैसे हैं आप।
1: हम
0: आपका
1: बहुत
0: त्योहार
1: अच्छे हैं,
0: कैसा बीता परसों आप?
1: और त्योहार का तो बहुत अच्छा देता है हमारा। हम गांव से देहात में थे अभी, तो बहुत अच्छा मिलनसार गांव देहाती होता है ना। तो अपने अभी
0: बिल्कुल
1: इंदौर में
0: बिल्कुल।
1: रहता हूँ, मगर मैं वहाँ अभी यहाँ पेटत्र गांव में आया हूँ मैं।
0: अच्छा।

0: अच्छा
1: अपना गांव है
0: हाँ
1: जहाँ
0: हाँ
1: से अभी अभी मेरे भाई ने भी फोन किया था, वो वहां से भी बहुत श्रोता, बहुत अच्छे दर्पण में बहुत अच्छा आता था पहले। ना आप पढ़ती थी, सर भी पढ़ते थे, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: कार्यक्रम आपका जो होता है मैम बहुत
0: हाँ
1: अच्छा रहता है। कहते हैं ना कि जीना तेरी गली में, रहना उसी में, जैसे प्यार के रंग भरे प्यारे अल्फाजों में। आपकी आवाज बड़ी दिलों की बातों, आवाज बड़ी सुरीली होती है सब।
0: थैंक यू वेरी मच
1: हाँ वो बहुत अच्छी लगती है। आपका जो प्रसारण का जो है, ये जो ये कार्यक्रम जो बहुत अच्छा श्रोताओं को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है।
0: बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं तो कई बार हमें अपने श्रोताओं की बातें भी बड़ी अच्छी और काम की लगती हैं, तो वो तो परस्पर एक दूसरे से विचार साझा करके सभी को फायदा होता है, हमें भी आप लोगों की बातचीत से काफी फायदा होता है।
1: बिल्कुल, ये बात तो एक दूसरे से दोनों का तालमेल
0: बिल्कुल
1: होगा
0: हाँ
1: तो इस
0: जी
1: कार्यक्रम रंगत रंगत बन जाती है।
0: बिल्कुल मंसूरी जी।
1: जी
0: और अभी हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम घूमने जाते हैं पर्यटन के लिए,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उसके
1: बिल्कुल।
0: जो चेंज हुए हैं, बदलते आयाम, वो आपको कैसे लगते हैं? पहले की तुलना में अभी
1: मैम
0: आपको क्या फर्क महसूस होता है?
1: देखो, पहले हमारी अपने अपनी पीढ़ी के वक्त वक्त में इतना साधन नहीं थे, और युवा पीढ़ी के हर जगह वक्त में है। उनका जो प्रभावित है और हमारे जो प्रभावित जो शब्द है उनमें बहुत काफी अंतर हो गया है। ये
0: जैसे बताइए आप।
1: जैसे कि जैसे आप जैसे युवा वर्ग है, युवा वर्गों को घूमने को नई नई चीजों से होती है। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी और भाई यहाँ गर्मी लग रही है, तो वहां चले, वहां पर उस थोड़ा सुकून मिल सकता है आप
0: हिल
1: लोगों को।
0: स्टेशन वगैरह बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: हाँ, तो ये वहां सुकून मिल सकता है आप लोगों को मिलने से। तो वास्तव में जाना भी चाहिए, घूमना भी जरूरी है मनुष्य की मानसिक जीवन को संतुलन करने के लिए। थोड़ा सा घूमना भी बहुत जरूरी हो गया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा नियाज जी,
1: जी
0: धन्यवाद
1: शुक्रिया
0: कॉल करने के
1: मैम।
0: लिए।
1: आपका नाम, शुभ नाम थोड़ा सा
0: कविता
1: बता
0: रावत,
1: सकते हैं?
0: कविता रावत
1: आज माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया मैम, शुक्रिया आपका। आप
0: जी
1: फोन,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। इसके साथ ही अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत को, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनाधिकृत गतिविधियों को हटाने का आदेश दिया गया है। ये निर्णय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय सुरक्षा सीमा बैठक में लिया था। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में काम किया है। प्रदेश में पांचवी राजवी की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। पहले परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी, लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। भोपाल के भारत भवन में सदानीरा जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन 2 जून तक किया जा रहा है। आज शाम 5:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मालवीय लोक गायन से शुरू होगा। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने राहत भरा रुख अपनाया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है श्रोताओं की पसंद के गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम श्रोताओं की पसंद के गीत से, जो कि मौसम के अनुसार है। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की है, फिल्म सिंदूर। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर।

कर प्रिंस एकांश गवांडकर सुखी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवांडकर, वैशाली गवांडकर, श्वेता सुमेध गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपिका कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का सिंदूर फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सिंदूर फिल्म का गीत। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में श्रोता हूँ आपको सुनवाते हैं आपके पसंद किए हुए गीत जो कि आप पत्रों के माध्यम से अपनी पसंद हमें भिजवाते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से। आवाज़ किशोर कुमार की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का। और पसंद करने के लिए अपने पत्र के माध्यम से अपनी फरमाइश आपने हमको भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदिति, शिवानी, शिवा श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नुरेशा बेगम फूलवाले, काप सहेड़ा नई दिल्ली से नशरीन आज़ाद, आसमान आमना आसमा परी और इमरान अहमद पाकवान। तो आइए आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं जो है फिल्म कटी पतंग से। आवाज किशोर कुमार की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हम भेजने वाले श्रोताओं के नाम है नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं उनका समस्त राजावर परिवार। इसी गीत की पसंद हमें मिली है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। इस गीत की एक पसंद हमें ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम की मिली है और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पसंद मिली है हरदेव मीका, बलविंदर पिरक, चेतक पिरक और मीका पिरक की। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फरिश्ता या कातिल फिल्म का गीत, शब्द रचना अनजान की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फरिश्ता या कातिल फिल्म का गीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश में आप भेजते हैं हमें अपनी फरमाइश के पत्र और हम सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नवरंग से, आवाजें आशा भोसले, चित्रकार और साथियों की, शब्द रचना भरत व्यास की है और संगीत सी रामचंद्र का है। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं बिल हरी खेरा से, संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खान एवं ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, गोविंद यादव। इसी गीत को पसंद किया है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और साइना शर्मा ने। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है करियादंड हट्टा जिला बालाघाट से हलास राम कटरे और नानेश्वरी कटरे की। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराजा आज़ाद नगर लखसर हरिद्वार से। तो आइए आप सबकी पसंद का सुनते हैं ये गीत जिसे हम सुनवा रहे हैं फिल्म नवरंग से।
1: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न न न न न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहां थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम, चमक झुम झुम

साना ना साना ना पावन चले झना ना झना ना झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नया न झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले झुम झुम झुम झमक झमक झुम झुम झुम झमक झमक झुम

चोर गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपीहा पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपीहा मन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उभारे प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे।

नदिया पहाड़ कर पार गोरी नार आई प्रीतम के द्वार अभिसार करने भइयों में बांध अपने प्रीतम की साध लगी।

0: आशा भोसले, चितलकार और साथियों के गाए नवरंग फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले।

0: लंबे जाएंगे?
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनिए धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि मुश्ताक सायरे को अपने घर वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन फाता सायरे को वापस नहीं भेजती है और उसे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मुश्ताक खाली हाथ वापस लौट जाता है। अब आगे।

0: अम्मी
1: मुश्ताक आ गया बेटा।
0: हाँ अम्मी।
1: अरे अकेला आया है, सारे नहीं आई?
0: नहीं अम्मी, सारे नहीं आई।
1: क्यों भला, तू गया था ना?
0: हाँ गया तो था, पर वो नहीं आई अम्मी। कह रही थी कि कुछ दिन और रहेगी अपनी अम्मी के घर।
1: बहुत दिन बाद गई थी, सो मन कर गया होगा रहने को। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ।
0: नहीं अम्मी अभी रहने दो, मन करेगा तो खा लूंगा।
1: अच्छा हसन बट भाई और फाता कैसी हैं, और उनकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ अम्मी सब ठीक है, सलाम भेजा है आप लोगों को।
1: अल्लाह सबको सलामत रखे।
0: अम्मी मैं कमरे में जा रहा हूँ।
1: खाना नहीं खाएगा क्या?
0: नहीं अभी नहीं, थोड़ी थकावट लग रही है।
1: ठीक है, जब तेरे अब्बा आ जाएंगे तो खा लेना।
0: अम्मी अब्बा गए कहाँ हैं?
1: कह कर तो नहीं गए, कहीं बैठ गए होंगे गप्पे मारने। इस उम्र में बचा ही क्या है करने को।
0: अच्छा अम्मी अब्बा आ जाएं तो बता देना, तब तक मैं आराम कर लूं।
1: ठीक है।

0: कौन?
1: अरे मैं हूँ।
0: आ गए?
1: हाँ, वो जानवरों के चारे के लिए गया था। असलम को कह दिया है, वो कल पहुंचा देगा।
0: चलो, अच्छा किया।
1: सुनो,
0: हाँ?
1: मुश्ताक सारे को लेने गया था, आया नहीं अभी तक क्या?
0: थोड़ी देर पहले ही आया है।
1: है कहाँ?
0: अपने कमरे में है।
1: सारे?
0: सारे नहीं आई।
1: क्या? सारे नहीं आई है? मुश्ताक तो लेने गया था ना?
0: गया तो था, पर सारे नहीं आई।
1: वहाँ सब सलामत तो है ना?
0: मुश्ताक तो कह रहा था कि सब सलामत है।
1: तो फिर सारे क्यों नहीं आई?

0: कुछ दिन और रहना चाहती है अम्मी के पास।
1: कुछ और बात तो नहीं हुई नवा?
0: और कुछ तो बताया ही नहीं मुश्ताक ने, जो बताया था वो मैंने आपसे कह दिया।
1: तो ठीक है, अरे कुछ दिन रहकर ही सारे को बुला लिया जाएगा।
0: मुश्ताक को बुला लेती हूँ, उसने खाना भी नहीं खाया।
1: ठीक है, बुला लो, आज साथ ही खाना खा लेंगे।

0: मुश्ताक नहीं आया?
1: नहीं, मुश्ताक की तबीयत ठीक नहीं।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: हुआ तो कुछ नहीं, पर परेशान लग रहा है।
0: अरे पूछा नहीं, क्यों परेशान है वो?
1: पूछा तो था, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
0: ये क्या बात हुई बोला?
1: अजी, जवान बेटे पर कोई बात बताने को जोर भी तो नहीं डाल सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के ना आने से मुश्ताक थोड़ा परेशान है, इसीलिए ऐसा कर रहा है।
0: ठीक है, ये हो सकता है, हो सकता है।
1: हाँ, अभी अभी तो निकाह हुआ है, सो सारे की याद तो आएगी ही।
0: फजी, मुश्ताक का खाना उसके कमरे में ही भेज दो और मेरी थाली में निकाल दो। ठीक है, बाकी बातें खाते हुए करेंगे।
1: हाँ, मुंह हाथ धोकर आओ, मैं खाना निकालती हूँ।
0: ठीक है, अरे रे जाओ, पहले मुश्ताक को खाना दियाओ।
1: तुम बैठो तो, मैं अभी देकर आती हूँ।

0: अरे भाई, इस उम्र के बच्चों को संभालना, समझना बहुत मुश्किल काम है।
1: क्या कहते हो जी?
0: अरे सच कह रहा हूं फजी, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी

0: और उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है।
1: क्या कर सकते हैं हम, मुश्ताक को ही लो, सारे नहीं।

0: इस पर हमारा कोई अख्तियार भी नहीं है।
1: छोड़ो भी इन बातों को, अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होगा वही होगा, कुछ नहीं बदलेगा, ना मेरे कहने से ना तुम्हारे कहने से।
0: अल्लाह ताला पर ही तो भरोसा है, जिससे मन को तसल्ली।

0: बता देती हूँ।
1: नहीं, अगर परेशानी हो तो रहने देना।
0: अजी, परेशानी किस बात की, अभी बना देती हूँ।
1: सुनो, वो कुछ लकड़ियाँ देती जाना, अलाव में आग जला दूँ। अब ये ठंड कुछ बढ़ गई लगती है।

0: क्या कर रही हो फजी?
1: अरे मेहर, आओ आओ, बर्तन मांज रही हूँ।
0: क्यों, बहू कहाँ गई?
1: मायके गई हुई है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, सो मिलने गई थी।
0: तो क्या अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है?
1: तबीयत तो ठीक हो गई है, पर सारे कुछ दिन मायके में रहना चाह रही थी, सो अभी आई नहीं है।
0: एक बात कहूँ फजी, बुरा तो ना मानोगी?
1: ऐसी भी क्या बात है बीबी कि बुरा मानू, पहले बात तो कहो।
0: अपने पर ना लेना फजी, ये पहले कह देती हूँ। हाँ
1: बीबी, तुम बात तो कहो, यूं पहेलियां क्यों बुझा रही हो?
0: फजी, आजकल की लड़कियों का क्या कहूँ, दिमाग खराब हो गया है।
1: अरे बात क्या हुई?
0: बात क्या होनी थी, तुम नहीं पहचानती, मेरी दूर की रिश्तेदार थी, उसने तो हद ही कर दी।
1: मेहर बताओ तो हुआ क्या?
0: वो अपने शौहर को छोड़ दूसरे लड़के के साथ चली गई।
1: अरे रे, ये तो बुरा हुआ बीबी, पता नहीं आज के बच्चों को होता क्या जा रहा है।
0: फजी मेरी मान, तू बहू को बुला ले, ज्यादा दिन लड़की मायके में रहे तो लड़की का सर घूम जाता है, और अपने लड़के को भी थोड़ा समझा कि बीवी पर लगाम रखे, बुरा ना मानना। सुना तो मैंने यही है कि अपनी अम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर मायके में रह रही है।
1: मेहर बीबी, तुम्हारा कहना सही हो सकता है, पर सब के लिए नहीं। मेरा बेटा और मेरी बहू ऐसे नहीं है कि उन पर दबाव बनाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े।
0: अरे फजी, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो यूं ही कह रही थी, तूने तो बात अपने पर ले ली।
1: बीबी बुरा नहीं मानती,
0: पर वर छोड़ फजी, मैंने दुनिया देखी है और उसी तजुर्बे से कहती हूँ, तेरी बहू ठीक है, तेरा कहा मानती है, पर सबका नसीब तेरे जैसा तो होता नहीं कि बहू की सेवा पाए।
1: मेहर

0: बीबी, बहू पर दबाव बनाने से बहू सेवा करेगी ही, अब ये बात तो कोई तय नहीं है ना।
1: फजी, तू मेरी बात समझ नहीं रही है कि मैं कह क्या रही हूँ। लोग कहते हैं कि मुश्ताक को घुमाकर बहू मायके में मजे कर रही है।
0: किसने कहा तुमसे ये सब झूठ है?
1: अरे, ये तो मैं भी जानती हूँ कि झूठ है, पर कहने वालों के जुबान थोड़े ही बंद की जा सकती है। उनके मन में जो आए सो कहते हैं, पर उनकी बातों पर तू ध्यान न देना।
0: मेहर बीबी, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू अच्छी है और मुश्ताक को भी प्यार करती है। जमाने को क्या, किसी का भला तो देखा जाता नहीं, बकने लगते हैं।
1: छोड़ो भी उनकी बातों को। सुना है कि मुश्ताक बहू को लेने गया था, ये बात तो सच है ना?
0: हाँ, गया तो था मुश्ताक,
1: फिर भी बहू नहीं आई, यही ना?
0: अरे, अम्मी की बीमारी में गई थी, कुछ दिन रहना चाहती थी सो नहीं आई, और क्या।
1: लोग ये तो नहीं जानते, बस कह देते हैं कि।
0: क्या कहते हैं?
1: यही कि मुश्ताक का अपनी बीवी पर कोई जोर नहीं चलता, बीवी जो कहती है मुश्ताक वही करता है, गुलाम हो गया है।
0: देखो बीबी, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, उन्हें ही ये फालतू बातें सूझती हैं। और एक बात कह देती हूँ, हाँ, बुरा ना मानना, तुम जहाँ भी ये फालतू बातें सुनती हो ना, अल्लाह कसम, अपने तक ही रखा करो बीबी। मुझे इन फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने बेटे मुश्ताक को जानती हूँ और अपनी बहू सारे को भी जानती हूँ।
1: नाराज ना हो फजी, लोग तो यूं ही बकते हैं, मैंने तो जो सुना था वही कह दी, बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना।
0: तुम भला क्यों माफी मांग रही हो मेहर बीबी? वक्त आएगा तो वे लोग देखेंगे कि घर क्या होता है और घर को चलाया कैसे जाता है।
1: अच्छा फजी, मैं तो अब चलूंगी, बड़ी देर हो गई।
0: थोड़ी देर बैठो, चाय तो पीती जाओ।
1: फिर कभी पी लूंगी, अभी तो चलती हूँ। और हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानना, तुम्हें अपना समझती हूँ इसीलिए कह देती हूँ।
0: कोई बात नहीं, अपनों की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या?
1: अच्छा, अब चलती हूँ। खुदा हाफिज।
0: हाफिज खुदा।

0: फौजी, फौजी, फौजी, क्यों, क्या हुआ फौजी? यूं गुमसुम से क्यों बैठी हो?
1: नहीं, कुछ नहीं, यूं ही बैठी हूँ।
0: यूं ही बैठी हो तो गुमसुम से क्यों? कोई बात हुई क्या? भाई तुम्हें इस तरह से उदास बैठे पहले तो नहीं देखा।
1: छोड़ो भी बातें बनाना।
0: अरे अरे तुम तो नाराज हो गई। बोलो बोलो क्या बात है?
1: नहीं कुछ भी तो नहीं।
0: फजी तुम परेशान हो और तुम्हारी परेशानी साफ साफ पता चल रही है। ठीक है अब तुम बताना ना चाहो तो भाई तुम्हारी मर्जी।
1: सारे को बुलवा लेते।

0: अरे को बुलवा लूं, क्यों क्यों बोला? अरे वो मायके ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: सारे है तो मायके में, पर लोगों को क्या कहें।
0: अरे इसमें लोगों को कहने वाली क्या बात हो गई?
1: आसपास के लोग क्या क्या बातें करते हैं तुम्हें क्या पता।
0: लोगों का क्या है? वैसे हुआ क्या जो तुम इतनी जिद कर रही हो कि सारे को बुला लूं?
1: आज मेहर बीबी आई थी, उन्होंने ही बताया कि लोग सारे और मुश्ताक को लेकर क्या क्या कहते हैं।
0: अरे तुम भी किसकी बात लेकर बैठ गई? अरे वो मेहर बीवी को तो बस जो मन में आया बक दिया, ना आगे सोचा ना पीछे, यूं ही मनगढ़ंत बोलती रहती है।
1: पर सारे को मायके गए भी तो कितना समय हो गया।
0: अरे भाई सारे अपनी अम्मी के घर ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: देखो जी, निकाह के बाद मायके में इतने दिन रहना अच्छा नहीं होता। अब मुश्ताक को बोल दो कि सारे को ले आए।
0: ठीक है, मुश्ताक को तुम ही बोल दो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
1: ठीक है, मुश्ताक घर आता है तो कहूंगी कि कल ही सारे को लेने चला जाए।
0: ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। और हाँ देखो देखो, ये एक बात मैं कह देता हूँ, तुम मेहर बीवी जैसी औरतों की बातें मत सुना करो।
1: अरे मैं कोई सुनने थोड़े ही गई थी, वो तो खुद आई थी यहाँ।
0: देखो फजी, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो।
1: कैसे ना दूं, आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है।
0: तो ठीक है, हसन भट्ट को पैगाम भेजता हूँ कि वो सारे को भेज दे।
1: हाँ, मुश्ताक को भी कहती हूँ कि सारे को लेने के लिए चला जाए।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सतीश कक्कड़ और कोइना। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुनी धारावाहिक सिसकिया की चौथी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। इसके तहत सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसान कल्याण वर्ष के तहत अब प्रदेश में सिर्फ 5 रुपये में सिंचाई पंप का नया बिजली कनेक्शन मिल रहा है। बाकी की राशि किश्तों में चुकानी होगी और अधिक जानकारी के लिए बिजली दफ्तर या कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। उज्जैन संभाग के 11 मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए के टेंपल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार पर कुल 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगामी 31 जुलाई तक टेंपल बॉन्ड जारी कर दिए जाएंगे। भोपाल के भारत भवन में सदानीरा जल रंग संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो 2 जून तक चलेगा। आज शाम 5:30 बजे से आयोजन मालवी लोक गायन के जरिए शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, नीमच और प्रदेश के कई जिलों में ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम।

सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नजरों में। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

दोस्तों, आज का युग वैश्वीकरण का युग है। दुनिया के सभी देश एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। जब विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रों में मिलकर कार्य करते हैं, तो इसे वैश्विक सहभागिता कहा जाता है। यह सहभागिता विश्व में शांति, विकास और सहयोग को बढ़ावा देती है। वैश्विक सहभागिता के माध्यम से देश अपने ज्ञान, तकनीक और संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। इससे नई खोजों और विकास कार्यों को गति मिलती है, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्रों में और देशों के बीच सहयोग से मानव का जीवन अधिक सुविधाजनक बना है। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान भी अकेले किसी एक देश द्वारा संभव नहीं है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। कोरोना महामारी के समय विश्व के कई देशों ने एक दूसरे की सहायता की, जो वैश्विक सहभागिता का अच्छा उदाहरण है। वैश्विक सहभागिता से विभिन्न देशों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है। विद्यार्थी देशों में शिक्षा प्राप्त कर नए अनुभव हासिल करते हैं। इससे आपसी समझ और भाईचारा बढ़ता है। बहनों, वैश्विक सहभागिता आधुनिक विश्व की आवश्यकता है। यह केवल देशों के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। बहनों, सभी देश मिलजुल कर कार्य करें तो विश्व में शांति, समृद्धि और सहभागिता स्थापित की जा सकती है। बहनों, गीत संगीत जो सभी के दिलो दिमाग को तरोताजा करते हैं, तो आइए सुनते हैं गीत साथी हाथ बढ़ाना, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है नया दौर।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत साथी हाथ बढ़ाना, जिसे गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम नया दौर।
1: बहनों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर करिमा तिवारी, जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं, जो टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में है। अच्छा करिमा जी, ये बताइए, जैसे कि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां फैलती हैं?
2: गर्मी के मौसम में चूंकि गर्म पूरा वातावरण गर्म होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में लू लगना, डिहाइड्रेशन, दस्त, उल्टी, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और त्वचा संबंधी बीमारियां अधिक फैलती हैं।
1: अच्छा अच्छा, ये जैसे कि लू लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं?
2: लू लगने के मुख्य कारण है तेज धूप में अधिक समय तक रहना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, चूंकि बहुत पसीना आता है जिसकी वजह से हमारे शरीर से पानी की कमी होने लगती है, गर्म हवाओं के संपर्क में आना और सिर ढककर बाहर ना निकलना लू लगने के मुख्य कारण।
1: जी अच्छा करिमा जी, जैसे कि ये गर्मी से बचने के लिए लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
2: लोगों को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए, दोपहर की तेज धूप से बचना चाहिए और बाहर निकलते समय छाता या टोपी का उपयोग करना चाहिए और जब भी घर से बाहर निकले तो एक गिलास पानी पी के निकले।
1: अच्छा,
2: आने के बाद तो पानी ना पिए, लेकिन जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले एक गिलास पानी पी के निकले।
1: अच्छा, शरीर में पानी की कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं?
2: पानी की कमी होने से चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द, थकान, बेहोशी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती
1: हैं। अच्छा करिमा जी, जैसे कि गर्मी में कौन कौन से पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं? आजकल गर्मी में जैसे कि पेय पदार्थ लोग ज्यादा पीते हैं, तो कौन से पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं
2: जो इस मौसम में अवेलेबल होते हैं? पहली बात तो उन पेय पदार्थों को पीना चाहिए, जैसे गर्मी में नींबू का पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, आम पना, ताजे फलों का रस,

0: गन्ने का रस, ये सभी लाभदायक है।
1: अच्छा, ये गर्मी के मौसम में लोग जैसे बाहर का खाना, अब आजकल का चलन ही है कि लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो गर्मी, क्या गर्मी के मौसम में बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल हाँ, गर्मी में बाहर का बासी या खुला खाना जल्दी खराब हो जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग और पेट की बीमारियां हो सकती हैं।
1: अच्छा, ये डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं?
0: डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण है अत्यधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, कमजोरी, चक्कर आना, कम पेशाब आना, और जो पेशाब का कलर होता है वो बहुत डार्क येलो हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और शरीर में थकान महसूस होना डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गर्मी के मौसम में संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए, हमेशा कभी भी जाएं तो पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, साफ सफाई रखें, तेज धूप से बचकर रहें, तभी हम सब स्वस्थ रह सकते हैं।
1: सचमुच गर्मा जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी बहनों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गर्मा जी।
0: वैसे भी सब बहनों को बहुत प्यार, और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी, बहुत आनंद आया। नमस्कार।
2: बहनों, जल मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी पर जीवन जल के बिना संभव नहीं है, लेकिन आज बढ़ती गर्मी, जनसंख्या वृद्धि और जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गर्मी में तापमान बढ़ने से जल स्रोत तेजी से सूखने लगते हैं। लोग पानी, खेती और अन्य कार्यों के लिए अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वर्षा जल का सही ढंग से संरक्षण न हो पाना भी जल स्तर गिरने का मुख्य कारण है। पेड़ों की कटाई, बढ़ता शहरीकरण और कंक्रीट सड़कों के कारण वर्षा का पानी जमीन में नहीं समा पाता, परिणाम स्वरूप भूजल का पुनर्भरण नहीं हो पाता और जल स्तर नीचे चला जाता है। बहनों, जल स्तर कम होने से कुएं, तालाब और हैंडपंप सूखने लगते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिससे फसलें प्रभावित होती हैं और कई स्थानों पर लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। बहनों, इस समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बारिश की पानी जमीन में पहुंच सके। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, क्योंकि वह जल संरक्षण में सहायक होते हैं। हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और अनावश्यक जल व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। खेतों में सिंचाई जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। सरकार और समाज दोनों को मिलकर लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। बहनों, जल ही जीवन है। यदि आज हमने जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पानी बचाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। सामूहिक प्रयासों से ही हम गिरते जल स्तर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहनों, आइए सुनते हैं गीत आया सावन झूम के, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

बहनों, अभी हमने सुना गीत आया सावन झूम के, जिसे गाया था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम आया सावन झूम के। बहनों, मुझे पता है आपको इंतजार है आज के व्यंजन का, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आम का पना। बहनों, आम पना भारत का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक पेय है, जो विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में बनाया और पिया जाता है। यह कच्चे आम से तैयार किया जाता है और शरीर को ठंडक पहुंचाने में बहुत लाभदायक माना जाता है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, इसलिए बच्चे और बड़े सभी इसे पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं आम पना बनाने के लिए किन सामग्री की जरूरत पड़ती है। सामग्री है कच्चा आम, चीनी, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, पुदीने की पत्तियां, पानी और बर्फ के टुकड़े। विधि है कच्चे आम को अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद आमों को कुकर या बर्तन में उबाल लें और ठंडा होने पर छिलका हटा दें। फिर आम के गुदे को मिक्सी में डालें और उसमें चीनी, काला नमक, भुना जीरा और पुदीने की पत्तियां मिलाएं और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लें। तैयार मिश्रण को बड़े बर्तन में निकालें और ठंडा पानी मिला दें। अब गिलास में बर्फ डाल

पर ठंडा ठंडा आम का पन्ना परोसें। बहनों, आम का पन्ना शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू से बचाने में मदद करता है, पाचन के लिए लाभदायक होता है और विटामिन सी से भरपूर होता है। बहनों, आइए सुनते हैं गीत पीपल के पतवा पर, जिसे गाया है सोनू निगम और जसपिंदर नारुला ने। फिल्म का नाम है सूर्यवंशम।

बहनों, अभी हमने सुना गीत पीपल के पतवा पर, जिसे गाया था सोनू निगम जसपिंदर नारुल्ला ने। फिल्म का नाम सूर्यवंशम। बहनों, अब इसी के साथ समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: इस समय आप है हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभी आपने सुना परचन गीत, आवाज संध्या पाठक की थी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है सुहाग गीत, आवाज संध्या पाठक की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संध्या पाठक के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए एक बैलम गीत, आवाज संध्या पाठक की और प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

संध्या पाठक के गाए इस बैलन गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब सुनिए सुगम संगीत। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी रीवा की ही प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए भजन और गीत।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए कुछ भजन। अभी आपने सुनी कबीर की रचना, अब सुनिए ब्रह्मानंद की रचना आवाज लल्लू राम की।
1: वृंदावन कुंज भवन नाचत
0: आवाज लल्लू राम शुक्ला।

0: अभी आप सुन रहे थे नीरज की रचना, आवाज़ लल्लूराम शुक्ला की। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लोफर फिल्म के गाए आशा भोसले के गीत से, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना लोफर फिल्म का गीत, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने सुना दो रास्ते फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग का काम, फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध एक हफ्ते में दूर कर लिया गया है।
2: G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। वॉच टावर से लेकर, कनेक्टिंग रोड से लेकर, पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी और 2 साल में हमारा वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू का

0: कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोकभवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्यप्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। सीएम डॉक्टर यादव आज शाम को भोपाल वापस आ जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस बार रक्षा अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी ये डिग्री प्रदान की गई है। छतरपुर में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जिला प्रधान न्यायाधीश रविन्द्र सिंह और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश देवालिया आज साइकिल से अदालत पहुंचे। न्यायाधीश ने बताया कि अब प्रत्येक शनिवार सभी न्यायिक अधिकारी साइकिल से ही न्यायालय आएंगे ताकि आमजन को ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसा करना दरअसल पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और हम अपने देश हित के लिए भी काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मंत्रालय ने यह सर्वेक्षण 2023-24 में संचालित किया था। और अब बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। प्रदेश का आधा हिस्सा जहां भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं बाकी आधे हिस्से में तेज आंधी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड और मंदसौर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 8 जिलों में लू की भी चेतावनी है। हाल ही में हुई बारिश के कारण प्रदेश के ग्वालियर और दतिया जैसे शहरों के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शिक्षा पुंज 2.0 नवाचार जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर अक्षर साथी घर घर जाकर ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शाला से जोड़ रहे हैं। आगरमालवा जिले में माहवारी स्वच्छता दिवस पर ग्राम खेरिया और कानड़ स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। किशोरियों को इस दौरान स्वच्छता, एनीमिया से बचाव और पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। भोपाल जनजातीय संग्रहालय में कल संभावना कार्यक्रम होगा। इसमें राजगढ़ का मालवी गायन, नर्मदापुरम का कबीर गायन और डिंडोरी का गुदुम बाजा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। और रतलाम जिले में गुलाब चक्कर पर साहित्यिक संगम कविताई शब्दों की शान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नए रचनाकारों ने देशभक्ति, मातृप्रेम और नारी शक्ति पर मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है।

0: इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
4: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से

0: मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3:00 के बजाय 4:00 से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में

0: आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए खट्टा मीठा फिल्म के गीत से। लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं किशोर कुमार और साथी, शब्द रचना है गुलजार की और संगीत राजेश रोशन का।

0: राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना गुलजार का लिखा गीत। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की थी और फिल्म का नाम था खट्टा मीठा। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम थे ग्राम भैंसवाड़े तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोटकर। इसी गीत को पसंद किया था कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने। दुविधा नेवादा गाजीपुर से इस गीत को पसंद किया था प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय ने। और रेलवे कॉलोनी बठिंडा से इस गीत की पसंद आई थी जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म चरस से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं गोरीनगर इंदौर से आनंदपुर कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। गीत की एक पसंद मिली है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर की। तो इन सब की पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म चरस से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।
1: गुड नाइट।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में चरस फिल्म का गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म दादा से, और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी, प्रकाश वीर राजपूत डोंडी लोहारा बालोद से, कमलेश जयपुरिया टाउनशिप भिलाई से, अनुश्री प्रदीप पिंकी और प्रमिला प्रदीप जेल रोड रायगढ़ से, लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभयनंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद रोहित व मोहित, बेरडी से हुकुम करमरकर सुनीता करमरकर हार्दिक करमरकर प्राची करमरकर तनु करमरकर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुर, दतरंगी से भागवत वर्मा। इन सब की पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है दादा से। आवाज यशोदास की है, शब्द रचना कुलवंत चानी की और संगीत उषा खन्ना का है।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में भी आपने सुना कुलवंत जानी का लिखा गीत, आवाज़ यशोदास की थी और फिल्म का नाम था दादा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्ताबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। इस गीत की एक फरमाइश हमें मिली है प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की, गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। इसी गीत को पसंद किया है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर ने। भाटापारा ततरंगी से इसे पसंद कर रहे हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा। और सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सबने पसंद किया है फिल्म वो कौन थी का गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान की है और संगीत मदन मोहन का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, आवाज कुमार सानू और साधना सरगम की है और फिल्म का नाम है जुर्म। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर, बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का जुर्म फिल्म का ये गीत।

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए फिल्म जुर्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल एक दिवसीय दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे वहां कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 144वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोकभवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्यप्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओले गिरने और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर और रात 8:15 पर। शाम 6 बजे प्रसारित करेंगे भारतीय प्रसारण के 90वें वर्ष पर आकाशवाणी की विकास यात्रा। इस विषय पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का कार्यक्रम प्रसारण समय है 7:45। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8 बजे सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे युवा भारती और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा
1: और मैं हूं अपर्णा। स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। तो दोस्तों, आज है दिन शनिवार का और हम जानते हैं श्रद्धा कि हमारे साथ ही शनिवार का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और करे भी क्यों ना, आज हम उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है। आज के दिन हमें हम उनसे उनकी फरमाइशें लेते हैं और उनके पसंदीदा गाने सुनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो दोस्तों चलिए फिर देर किस बात की, जल्दी से अपने फोन सेट्स उठाइए और आप हमें कॉल कर सकते हैं 2710223 और 2710224, इन दोनों ही नंबर पर। पर याद रखें, इसके पहले इंदौर का एसटीडी कोड 0731 लगाना ना भूलें।
0: बिल्कुल, और हम हमारा कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स जल्द ही शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के दो प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी।
1: और आज का दूसरा प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है।
0: दोस्तों, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ कर रखिएगा और कार्यक्रम के अंत में इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स।
2: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
2: ग्राम सोराना, जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहे हूं।
0: हैदर खान जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
2: ये कयामत फिल्म का मिल जाएगा?
0: कयामत फिल्म से जरूर मिलेगा। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: वो लड़की याद आती है
0: सुनना चाहेंगे।
2: ये गीत बहुत दिनों से बजा नहीं है रेडियो पर।
0: अच्छा,
2: हाँ,
0: तो आपने बहुत दिनों से ये गीत सुना नहीं, इसलिए ये कारण है ये गीत की आज फरमाइश करने का।
2: हाँ मैडम, ये तो बहुत सारे गीत हैं लेकिन सुनते रहते हैं हम।
0: तो आपकी पसंद के कुछ गीतों के नाम बताइए आप हमें।
2: गीत तो बहुत है, मैं तो यूँ तो मतलब पुराने गीतों का शौकीन हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो पुराने गीत सुनना पसंद है आपको।
2: आशा भोसले, तलत महमूद, मन्ना डे वगैरह को सुनते रहते हैं।
0: बिल्कुल, आज की जो जनरेशन है ये लोग भी इन सभी सिंगर्स को सुनना पसंद करते हैं। इनकी आवाज में जो बात है वो अलग ही बात है। बिल्कुल, तो आपकी पसंद का जो गीत है हमें मिल चुका है, तो चलिए आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं।
3: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
4: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया?

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो फ्रेंड
0: जी, नमस्ते
1: जी। मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का ना अंशमल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी पूरन जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा चल मेरे भाई।
0: चल मेरे भाई। चल मेरे भाई, इस फिल्म का आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, इसमें कौन कौन से गाने गाना है वो याद नहीं आ रहा मैं, आप बता दें मैडम।
0: इस फिल्म का कोई भी गीत अगर सुना दे तो चलेगा?
1: जी मैडम, एक गाना था मेरे वो, आप बता दो ना इसमें एक दो गाना तो मैडम।
0: हम तो देखिए आपकी फरमाइश पर गीत सुनाना चाहते हैं। अगर आपको उस गाने के बोल नहीं याद आते तो आप कोई और फरमाइश भी कर सकते हैं।
1: चलो फिर मेहंदी रंग लाली ये सुना दीजिए।
0: कौन सा?
1: मेहंदी रंग लाई तेरी सगाई गाना।
0: मेहंदी रंग लाई तेरी सगाई का। बिल्कुल पूरन जी, हम कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश पूरी करने की। साथ ही बताइए, आप राजस्थान से बात कर रहे हैं तो आप इंदौर का हमारा युवाणी कार्यक्रम नियमित सुनते हैं?
1: जी मैडम, मैं आपका कार्यक्रम सुनता रहता हूँ, न्यूज के माध्यम से हमारे देश के कोने कोने तक पहुँचता है मैडम जी।
0: जी जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हमें दूर दूर से, दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से फोन आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। अच्छा लगता है कि इतनी दूर दूर तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है।
1: जी मैडम, अब न्यू डी आई आर ऐप के माध्यम से तो मैडम ये नहीं लगता कि आप दूर है या हम आपसे दूर है।
0: बिल्कुल सही बात। तो पूरन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी के साथ आपकी फरमाइश, जी हाँ बिल्कुल मिल गया है, लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश।
1: थैंक।

0: तो चलिए दोस्तों, अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से।
1: हेलो
0: हेलो फ्रेंड्स,
1: अनिल कौशल इंदौर से बात कर रहे हैं।
0: जी अनिल जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है हीर रांझा और गायक कलाकार है लता मंगेशकर अनवर और गीत है रब ने बनाया तुझे मेरे लिए।
0: रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, फिल्म हीर रांझा से।
1: लता मंगेशकर अनवर की आवाजों में है, हीर रांझा फिल्म की अजीतपुर की फिल्म है हीर रांझा।
0: कोई खास कारण इस गीत को पसंद करने का?
1: नहीं, ऐसे नहीं, रोमांटिक गीत ज्यादा पसंद आते हमको।
0: ओहो, रोमांटिक गीत सुनना पसंद करते हैं आप, इसलिए गीत चुना है आपने। वैसे आपने लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गीत सुना और पिछले काफ़ी दिनों से मतलब लता मंगेशकर जी की आवाज़ काफ़ी ट्रेंड में भी चल रही है।
1: हाँ बिल्कुल, उनकी आवाज़ को तो कोई भूल ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आप बताइए कि इंदौर से आप कॉल कर रहे हैं, तो इंदौर के मौसम के बारे में आपके क्या विचार है?
1: इंदौर के मौसम का तो थोड़ी गर्मी अभी कम है, 38-39 डिग्री तापमान है, बीच में अभी बहुत 42-43-44 तक गया था। फिर हम बैंक में काम करते हैं, तो बैंक के काम से बाहर जाना पड़ता है, तो थोड़ी परेशानी भी हो रही थी बैंक के काम करने में, क्योंकि हमने कभी बचाव का उपयोग नहीं किया, कभी हेड लगाना, कभी टोपी लगाना, कभी गॉगल लगाना। मौसम अपना सकता है, अपना काम करना है, उसमें मौसम से क्या डरना। बारिश के दिन में बारिश होगी, ठंड के दिन में ठंड आएगी, गर्मी के दिन में गर्मी होगी।
0: बिल्कुल, चलिए अच्छी बात ये है कि चाहे कुछ भी कारण हो, लेकिन चाहे कितनी भी गर्मी हो, अपना काम करते रहना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई श्रोताओं को। तो चलिए अनिल जी, आपकी पसंद का वैसे गीत भी हमें मिल चुका है, तो आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: धन्यवाद मैडम, है ना।
0: धन्यवाद।

0: चलो श्रद्धा, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड्स
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: क्या नाम है आपका?
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर।
0: जी हसीना जी, कैसे हैं आप और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं और दुआ करते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और इंदौर का मौसम भी बहुत अच्छा है।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा है। आज तो मौसम ने थोड़ी सी करवट भी बदली है, तो आप अपना गीत बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है एक जान है हम।
0: एक जान है हम।
1: हाँ, शब्बीर कुमार की आवाज़ में और गाने के बोले, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मिलान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी।
0: क्या बात है सिन्हा जी, क्या बात है। आपको म्यूजिक का बहुत शौक है लगता है ना?
1: जी, दिन भर रेडियो चलता रहता है ना।
0: जी हाँ हाँ हाँ, आप हमारे कार्यक्रम के नियमित श्रोता भी है, ये बात भी हम जानते हैं। तो ये गीत आज चुनने का कारण क्या हो सकता है?
1: ऐसे गाने सुनते हैं मैडम कि बहुत सालों से सुनाई नहीं देते रेडियो पे।
0: अच्छा, नहीं नहीं, अच्छी बात है। और मौसम को देखते हुए ये गीत भी बेहद हसीन सुना है आपने, तो चलिए आपकी फरमाइश तैयार है, लीजिए सुनिए।
1: शुक्रिया मैम
0: जी।

0: तो दोस्तों चलिए अब जुड़ते हैं हम हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स।
1: नमस्कार दीदी जान।
0: नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं?
1: अरे मैडम जी, मान के चले कहते जिंदगी में जीते जीते, जिंदगी में जीते जीते हंसना जरूर था
0: जी।
1: और आप मिल गए तो समझो कि आकाशवाणी इंदौर को प्यार करना जरूर था।
0: क्या बात क्या बात। अच्छा अपना नाम तो बताइए आप।
1: अब नाम भी बता रहा हूँ, काम भी बता रहा हूँ, गाना भी सुनूंगा अब आपसे। ये मान के चलिए कि आपसे बात करने के लिए मैं इतना बेताब था, इतना बेचैन था, मछली की तरह तड़प रहा था। कहते हैं कि प्यार एक तरफ हो तो सजा देता है और प्यार जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। फिल्म का नाम बता दूं? अच्छा अभी पहले पता तो बता दूं, मैं भूल गया, बातें करते करते सब कुछ भूल गया, याददाश्त भूल गई थी।
0: आप नाम भी बताना भूल गए हैं।
1: अरे अब दीदी जान क्या है, खुशियों में जब अच्छी खुशी की बौछार हो जाती है तो खुशियों में इंसान का निशाना चूक जाता है कहीं ना कहीं। तो चलो मैं बता दूं, ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, तो चलिए
2: मोहम्मद खान जी बहुत अच्छी शुरुआत की आपने इस कॉल की। आप साथ ही बता दीजिए कि कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: अब मैं दीदी जान बता दूं, मैं हंसी मजाक से भरपूर हूं और धुआंधार गीत सुनता हूं, धांसू गाने सुनता हूं, जो गीत समझ लो कि ताबड़तोड़ हो। और आपकी भाभी जान भी बहुत जबरदस्त बात करती है, थोड़ी सी कर लो लैला दीवानी, नहीं तो वो लफड़ा हो जाएगा और हंगामा हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
3: नमस्कार,
0: हम आपसे बातचीत खूब करेंगे, हम आपको पूरा समय देंगे बातचीत करने का, पर पहले आप अपनी फरमाइश का गीत तो बताइए।
1: हाँ गाना तो तत्काल मिल जाएगा, ये गीत के बोल है, वो प्यासा सावन का गीत है।
0: वो प्यासा सावन का
1: नहीं, वो नहीं, वो नहीं, प्यासा सावन ही सिर्फ लता जी की आवाज में, और गीत के बोल है तेरा।

0: उज्जैन से कॉल कर रहे हैं हमें।
1: हाँ जी, जिला लगता है उज्जैन हमारा
0: जी। अच्छा, बिच्छू फिल्म से अखिया लड़ी।
1: हाँ जी, अखिया लड़ी।
0: अरे वाह, तो इस गीत को चुनने के पीछे कोई खास कारण?
1: जी, ये गाना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और जब साउंड पे बजता है ना तो ये डांस करने का मन करता है बड़ा।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, बहुत अच्छा गाना है ये। और जो 2000 का दशक था, जो ये शुरुआती दशक था, इसमें ऐसे गाने काफी ज्यादा फेमस होते थे और आज तक ये गाने चले आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल,
2: कोई ना चाहते हुए भी झूम उठे, इस तरह के गाने होते थे। नहीं,
0: बिल्कुल
1: ना चाहते हुए झूम उठे, सही बात है। अभी आज सुबह हल्की बारिश भी हुई हमारे यहाँ पे।
0: जी जी जी जी,
1: हाँ जी, और ठंडा मौसम हो गया पूरा, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है।
2: जी प्रेम जी, मौसम अभी तो बदलता ही रहेगा, बदल रहा है, तो आप सावधानियां बरतिए।
0: और वैसे भी जैसा मौसम चल रहा है, जितनी गर्मी है उसमें थोड़ी सी राहत की जरूरत तो थी ही हमें, क्योंकि गर्मी बिल्कुल बख्श नहीं रही है। 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर लगभग रोजाना चल रहा है।
1: जी बिल्कुल, ऐसा ही हो रहा है 15-20 दिन से, लेकिन आज तो काफी ठंडक थी तो बड़ा अच्छा लगा पूरा दिन।
0: अब उम्मीद है कि इंदौर में भी बारिश जल्दी आ जाए।
1: जी बिल्कुल, हम तो महाकालेश्वर बाबा से यही उम्मीद करेंगे कि हर जगह ठंडक पहुंच जाए।
0: हाँ बिल्कुल, हमारी भी यही उम्मीद है, हमारी भी यही प्रार्थना है कि ऐसा ही कुछ हो जाए और जल्दी से मौसम बदले, थोड़ी राहत मिले इस तपती गर्मी से।
2: तो चलिए प्रेम जी, आपकी फरमाइश तैयार है, लीजिए सुनिए आपका
1: पसंद। बात सुनिए
2: जी,
1: ये मेरी बिंदिया बात करने जाती है, मेरी लड़की छोटी वाली।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हेलो, नमस्ते। Hello? बिंदिया।
3: हाँ नमस्ते मैम, कैसे हो आप?
0: हम बिल्कुल ठीक है बिंदिया, तुम कैसी हो?
3: मैम भी बढ़िया है।
0: स्कूल जाती हो?
3: हाँ मैम।
0: पर अभी तो शायद गर्मियों की छुट्टियां चल रही होंगी।
3: हाँ मैम।
2: तो चलो बिंदिया, आपके पापा ने हमें आपकी फरमाइश बता दी है, तो साथ ही सुनिए आपका पसंदीदा गीत।
3: हाँ सर, थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा।
2: हमें भी
0: हमें भी।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, नमस्ते। कैसे हैं आप और आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी इतिहास फिल्म का सुनना चाहेंगी, इश्क बड़ा बेदर्दी है रात दिन सताए।
0: इतिहास फिल्म से इश्क बड़ा बेदर्दी है।
1: जी
0: जी, तो भगवान जी आप इस ये गीत चुनने के लिए आज कोई कारण है इसके पीछे?
1: नहीं दीदी, कोई कारण नहीं है। हम आपके कार्यक्रम से हमेशा जुड़ते हैं दीदी, हमेशा सुनते भी हैं, और अभी तो हमने सुबह 10 बजे वाला जो लाइव कार्यक्रम आता है दीदी, एमएच हॉटलाइन क्या है दीदी वो?
0: हाँ जी हाँ जी, यही है।
1: उसको भी सुनते हैं दीदी रेगुलर अब।
0: क्या बात है, बहुत मतलब आप आकाशवाणी के निरंतर श्रोता है।
1: जी जी
0: जी जी, तो आपकी फरमाइश तैयार है भगवान जी, तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद दीदी।

0: तो दोस्तों ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, और हमें बहुत अच्छा लगा हमारे श्रोताओं से बात करके, नहीं श्रद्धा?
1: बिल्कुल, और उम्मीद है कि आपको भी आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा जितना पसंद हमें आया है। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर जाने का। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, तो चलिए उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा कर देते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न था कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, और इसका उत्तर है किरण बेदी।
0: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न था, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, इसका उत्तर है गोदावरी नदी को।
1: उम्मीद है दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपने ढूंढ लिए होंगे और सही ढूंढे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी अगले किसी कार्यक्रम में। इसी के साथ मैं श्रद्धा
0: और मैं अपर्णा आपसे अनुमति लेते हैं।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत एक था टाइगर। इस फिल्म का गीत सुनिए वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाज में। बोल कोसर मुनीर के हैं, धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

जब तक है जान। इस फिल्म का गीत सुनिए श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

एजेंट विनोद इस फिल्म का गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में। बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं, धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम विकसित भारत।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत 2047। आज आपके साथ हूँ मैं शालिनी सोनी। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, किसी भी देश का विकास आर्थिक नीतियों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, तकनीकी नवाचार, शासन का मिला जुला परिणाम है, जिसके संतुलन के लिए हम नागरिकों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। विकसित भारत 2047 भारत सरकार का एक दूरदर्शी विजन है, जिसका लक्ष्य 2047 तक यानी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण स्थिरता और बेहतर शासन के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। साथ ही श्रोताओं, भारत में आर्थिक महाशक्ति के रूप में मजबूत अर्थव्यवस्था लाना और एक ऐसा विकास करना जिसमें ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों की उन्नति हो सके, युवाओं को कौशल विकास और तकनीकी नेतृत्व की दिशा में प्रोत्साहित करना, आधुनिकीकरण लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की ओर बढ़ना है। श्रोताओं, ये पहल केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत और ऐसे समावेशी समाज के निर्माण की परिकल्पना है, जहां हर नागरिक को उच्च जीवन स्तर प्राप्त होगा। और यकीनन, जब सामाजिक स्तर सुधरता है तो राष्ट्र प्रगति करता है। श्रोताओं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से देश के विकास में कर्तव्यों को पूरा करें, देश के विकास में सहयोग करें, साथ ही लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में हिस्सा लेकर देश विकास में अपना योगदान दें, ताकि हमारा देश दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित कर सके और विश्व में अन्य देशों की भांति एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरकर अपना वर्चस्व दुनिया में फैला सके।

0: श्रोताओं, 2047 विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में भारत की न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी है। एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं बल्कि समावेशी, न्यायपूर्ण और तकनीकी रूप से उन्नत समाज बनाना है। कुल मिलाकर कहें श्रोताओं, समयबद्ध और सुलभ न्याय हो विकसित भारत के लिए सबसे आवश्यक है। न्याय मिलने में देर ना हो। विकसित भारत में न्यायपालिका का लक्ष्य मुकदमों को लंबित होने की समस्या को कम करके सभी नागरिकों के लिए त्वरित व किफायती न्याय सुनिश्चित कराना है। अदालती कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ाकर ई कोर्ट प्रणाली के माध्यम से न्याय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना है ताकि देश की न्याय व्यवस्था उच्च कोटि की बन सके। छोटे एवं व्यावसायिक विवादों को अदालतों के बजाय वैकल्पिक विवाद निवारण जैसे मध्यस्थता के माध्यम से हल करने पर जोर दिया जाएगा ताकि न्याय प्रक्रिया तेज हो सके। 2047 तक विकसित भारत एक ऐसी न्यायपालिका की अपेक्षा करता है श्रोताओं, जो न केवल कानून व शासन लागू करे बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखे। तो श्रोताओं, इसी तारतम्य में आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं इंदौर जिला न्यायालय में पदस्थ असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सुश्री शिखा तिवारी जी से। श्रोताओं, देश आगे बढ़ रहा है और हम भी निरंतर नित प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी देश के विकास के पीछे एक दृढ़ कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था होती है जो देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाती है। हमारे देश के कानून प्रणाली में क्या कुछ नया है जो हमें सफलता पूर्वक 2047 की ओर अग्रसर कर रहा है और हमारे देश की पहचान एक विकसित राष्ट्र के रूप में बना रहा है। आइए जानते हैं हमारे आज के मेहमान शिखा जी से। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत में। शिखा जी, आपके साथ बातों का सिलसिला एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहूंगी कि आज के समय में क्या नया देख पा रही हैं हमारी न्याय प्रणाली में।
1: आज का जो लॉ है, जैसे पुराने जो लॉज होते थे, जो सोसाइटी है वो डायनामिक है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं उसमें, और डेवलपमेंट भी डायनामिक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग लॉज को भी चेंज होते रहना चाहिए। तो पहले ऐसा होता था कि जो लॉ बनते थे वो सालों तक वही रहते थे, बट अब ऐसा है कि जैसे जैसे सोसाइटी में और डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे लॉज जो है उन्हें चेंज किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल जैसे चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग लॉज को बदला जा रहा है। तो अब पुराने लॉज को खत्म करके उनकी जगह पे नए लॉज आए हैं क्रिमिनल लॉज को, जैसे पहले IPC था, अब भारतीय न्याय संहिता आ चुका है, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है, फिर एविडेंस एक्ट था पहले, उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है। तो इस तरीके से लॉज को चेंज किया गया है। जो पहले के लॉज थे वो इन चीज पे फोकस करते थे किस तरीके से जो एक्यूज है यानी कि आरोपी है उसको सजा देना है, उनके पे फोकस ज्यादा किया जाता था। आजकल के लॉज का जो फोकस है और व्यू पॉइंट है वो विक्टिम की तरफ ज्यादा है कि किस तरीके से विक्टिम को न्याय दिलाया जाए। सिर्फ इस बात पे फोकस नहीं रह गया है कि आरोपी को जेल भेजना है बल्कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको किस तरीके से रिलीफ मिले, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा जो कोर्ट है डिजिटल होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हुआ उन चीजों को सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वर्चुअल कोर्ट चल रही है, मतलब ऑनलाइन हियरिंग्स चल रही है, पहले विटनेसेस को भी बार बार कोर्ट आना जाना पड़ता था बट अब वर्चुअली भी सब हो सकता है, मतलब ऑनलाइन ही हियरिंग्स भी हो सकती हैं और बार बार विटनेसेस का आना जाना भी बच जाता है। इसके अलावा जो और चेंजेस आए हैं वो है कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस आ गई हैं। पहले केसेस खत्म होने में बहुत टाइम लगता था, जैसे कि हम सुनते हैं कि बहुत लंबा केसेस चलता है, बट अब ऐसा है कि जो केसेस हैं उसके लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम सेट कर दिया गया है हर जो भी लॉज अब आ रहे हैं कि आपको इतने टाइम में ये चीजों को डिसाइड करना है या खत्म करना है। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो कि अभी नई नई चेंजेस आते जा रहे हैं और 2047 तक ये और ज्यादा चेंजेस होके बेहतर होगा।
0: वाह, कुल मिलाकर हमारे जो नागरिक हैं जिनको न्याय चाहिए उनको अब तारीख पे तारीख का इंतजार नहीं करना होगा, है ना? शिखा जी, हर क्षेत्र में कई तरह की योजनाएं हमारी भारत सरकार चला रही है, तो क्या कानून व्यवस्था में भी सुधार के लिए या इसे और उच्च बनाने के लिए कोई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं?
1: बिल्कुल, जैसे कि AI का जमाना है और AI बहुत ज्यादा आजकल हर सेक्टर में यूज हो रहा है, वैसे ही लीगल फील्ड में भी एआई का यूज हो रहा है, ई कोर्ट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं जिससे कि किसी को भी हर बार कोर्ट नहीं जाना पड़ के ई कोर्ट के माध्यम से ही बहुत सारी चीजों का निपटारा किया जा सकता है। जैसे छोटे मोटे मामले हुए, ट्रैफिक चालान हुआ, इन सबके चक्कर में कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि वर्चुअल कोर्ट के थ्रू ही ये सारी चीजों को सुलझा दिया जाएगा। फोन में एप्लीकेशन है उसके थ्रू अब जो केसेस हैं पेंडिंग उसकी नेक्स्ट डेट जानना हुआ या उसका स्टेटस जानना हुआ या जजमेंट जानना हुआ ये सारी चीजें फोन ऐप के थ्रू भी मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने जैसे कि जन विश्वास एक्ट हुआ, इसके थ्रू जो छोटी मोटी गलतियां थी जिनके लिए पहले जो पनिशमेंट थी उसमें जेल का भी प्रावधान था तो जो एक लंबा केस चलता था वो केस नहीं चल के सिर्फ फाइन अमाउंट देके उसे खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा एक जो फेसलेस स्कीम जिसे बोलेंगे कि काफी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में अब इन पर्सन नहीं जाना पड़ता है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू बहुत सारे काम हो जाते हैं, चाहे किसी चीज के लिए अप्लाई करना हो या कोई सर्टिफिकेट्स निकालना हो तो इसके लिए वहां जाके लाइन में नहीं लगना है, ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है, काम हो जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं करप्शन भी कम होगा
0: जी।
1: और इसके साथ साथ एआई चैटबॉट्स आ गए हैं जो कि अगर हमें कुछ समस्या हो तो हम डायरेक्टली चैटबॉट्स के थ्रू अपनी समस्या बताएं और चैटबॉट्स हमें हर चीज का जवाब दे दें कि इसके लिए हम ये कर सकते हैं या समाधान जो है वो मिल जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो नई योजनाएं हैं या नई चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अडॉप्ट की हैं। इसके अलावा जो LADCS है यानी कि लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम है ये नालसा ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसके थ्रू ऐसे एक्यूज्ड या आरोपी जो है जिनके पास अपना वकील करने के लिए या खुद को डिफेंड करने के लिए पैसे नहीं है या किसी भी रीजन से वो अपने लिए कोई एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं के लिए गवर्नमेंट ने नालसा ने ये एक स्कीम लॉन्च की है जिसके थ्रू उन्हें फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री लीगल एड दिया जाएगा और ये उन्हें क्रिमिनल केसेस के हर स्टेज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसके थ्रू वो अपना जो केस है यानी कि प्री अरेस्ट, रिमांड स्टेज हुआ, बेल हुआ, ट्रायल हुआ, अपील, रिविजन, इन सभी चीजों के इनको एडवोकेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए उन्हें कोई फीस नहीं देनी रहेगी, सारी जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगी, बिल्कुल फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी एक नई योजना है जो सरकार द्वारा चल रही है।
0: शिखा जी, आगे हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे कानूनी बिंदु हैं जिन पर हमारी भारत सरकार विचार कर रही है और उनका नवीनीकरण कर रही है।
1: कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए अभी काम कर रही है, यानी कि वहां पे एक लीगल वैक्यूम बना हुआ है, या तो लॉज नहीं है उस पॉइंट पे या फिर कुछ ऐसे है कि इनसफिशियंट है यानी कि नई चीजों को डील नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले इसमें आता है डीप फेक। जितना एआई आजकल हमारे लिए यूजफुल है उतना ही कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होता जा रहा है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं फेक वीडियोस बन रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, चेहरा बदलकर फोटोज या वीडियोज बना दिया जाता है, या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, किसी का फोटो या नाम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये सारे केसेस हम देखते जा रहे हैं कि बहुत बढ़ते जा रहे हैं आजकल हमारे आसपास। और जो हमारा आईटी लॉ है या क्रिमिनल लॉज हैं वो हमारे पास है, कहीं ना कहीं सक्सेस कर रहे हैं बट स्टिल वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इन सभी चीजों को डील करने के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें हैं इन सबको वो अभी डील नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस स्पीड से एआई बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, उसी स्पीड से लॉज को भी बढ़ना और बढ़ना पड़ेगा जिससे कि ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं वो हैंडल कर पाए या टैकल कर पाए। एक सेक्टर और है जैसे कि जो गिग वर्कर्स का है कि जो डिलीवरी पार्टनर्स या ड्राइवर्स होते हैं ये दिन रात सुबह शाम से काम करते रहते हैं लेकिन इनकी कोई फिक्स सैलरी या जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो जो प्रॉपर लेबर कोड्स हैं उनके अंडर इनको अभी तक प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया है, जो भी कहीं ना कहीं एक लैकुना है कहीं नए लॉज के अंडर। इसके अलावा जो एक हमारा डेटा प्राइवेसी वाली बात आती है, जैसे कि हमारा फोन नंबर हुआ, एड्रेस हुआ या ईमेल एड्रेस, ये सब हमारे पर्सनल डेटा का पार्ट है बट ये कभी भी लीक हो जाते हैं, हमें स्पैम कॉल्स आते हैं, स्पैम मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई है, दैट इज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. इसका एनफोर्समेंट अभी ठीक तरीके से नहीं हो पाया है, अभी भी काफी लोगों का डेटा लीक हो रहा है. तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, बट वो अभी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं. तो
2: जी.
1: जैसे जैसे ही आने वाले दिनों में ये शायद प्रॉपर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे.
2: जी जी. कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, हमारी कानून व्यवस्था और सुदृढ़ होती जाएंगी और दुरुस्त होती जाएंगी, है ना? और शिखा जी, आगे और एक प्रश्न आपके लिए है कि विकसित भारत 2047 में कानून व्यवस्थाएं कैसे हमें मजबूती प्रदान करेंगी?
1: 2047 तक अगर हम देखें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो लीगल सिस्टम है ये पूरी तरह बदल चुका होगा. एक पूरा मॉडर्न, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन और सिटीजन सेंट्रिक होगा, कि बिल्कुल सिटीजन की तरफ ध्यान देगा और टेक्नोलॉजिकली बेस्ड होगा. ये एक चीज जो हम उम्मीद कर रहे हैं 2047 तक, वो एडवांस पुलिसिंग होगी और पुलिस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स को ध्यान में रख के पहले से ही सारे क्राइम पैटर्न और जो हॉटस्पॉट, हाई रिस्क हॉटस्पॉट है, उन सबको आइडेंटिफाई करके जहां भी उनको ऐसा लगता है कि क्राइम होने की आशंका हो वहां पे पहले से ही पहुंच के या पहले से ही उसको किसी तरीके से रोक पाए. तो इस तरीके का हम एक उम्मीद कर रहे हैं. इसके अलावा एक हम जो डेटा प्राइवेसी के बारे में उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तो हमारा डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है, बट जो लॉज अभी है हमारे पास उसमें और इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं अब हमारा डेटा प्रोटेक्ट हो और डिजिटल अपराध जो बढ़ रहे हैं वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए कहीं. इसके अलावा जो कोर्ट्स हैं वो इस तरीके से डेवलप हो जाएंगी, बिल्कुल वर्चुअल कोर्ट्स इतनी डेवलप हो जाएंगी. अभी तो चल रहा है काम, बट धीरे धीरे वो इतनी डेवलप हो जाएंगी कि हमें बिल्कुल शायद सारा काम बहुत जल्दी हो जाए और काफी चीजें कोर्ट में जाने से बचें, ऑनलाइन ही हो जाएं. ये सारी चीजें कुछ ऐसी हैं जो हम 2047 में उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से डेवलप होकर बाहर आए.
2: शिखा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और हमें भारत सरकार की नवीनतम कानून एवं न्याय व्यवस्था के बारे में अवगत कराया. आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू मैम.
0: वाकई श्रोताओं, जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो दोनों पहलू जरूरी हैं. पहली चीज, हम भारतीय नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, अपने अधिकारों को भली भांति समझें, और दूसरी बात, हम कानून की हद में रहें. साथ ही हमारी कानून व्यवस्था मजबूत होगी, शासन कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे, सरकारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जाए, तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएंगे. विकसित भारत 2047 में कानून व्यवस्था केवल सजा देने का प्रावधान नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी प्रगतिशील तंत्र होगा जो सुरक्षित, सुलभ और सशक्त माहौल प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग देगा.

श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा नागरिकों को कानूनी सहायता, न्याय समान रूप से पहुंचाने और संरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की निःशुल्क कानूनी सहायता योजना है। श्रोताओं, इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब, कमजोर, जरूरतमंद नागरिकों को बिना किसी आर्थिक बोझ से मुफ्त न्याय और कानूनी सलाह प्रदान कराना है। श्रोताओं, इसके तहत पात्र व्यक्तियों को वकीलों का खर्च, अदालती फीस, दस्तावेजों का और गवाहों के खर्च का पूरा भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत नालसावीर परिवार सहायता योजना भी है, जो विशेषकर रक्षाकर्मी, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को संपत्ति, पारिवारिक उपभोक्ता मामलों में मुफ्त न्याय प्रदान कराती है। लोक अदालतों के माध्यम से आपसी सहमति से मामलों को सुलझाने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित ना रहे। श्रोताओं, अगर आप भी किसी तरह की कानूनी मदद चाहते हैं तो जिला या तहसील में स्थित जिला या तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर श्रोताओं, हम कह सकते हैं कि विकसित होते भारत में कानून व्यवस्थाएं सुदृढ़ एवं मजबूत हैं और मजबूत कानून व्यवस्था एक मजबूत लोकतंत्र और एक मजबूत देश की नींव है।

0: विकसित भारत 2047 के निर्माण में नागरिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनना होगा। युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों सभी की सहभागीदारी आवश्यक है। श्रोताओं, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पूर्ण निष्ठा से पालन करें, कानून का सम्मान करें, भ्रष्टाचार का विरोध करें और ईमानदारी दिखाएं, अपने कौशल विकास को बढ़ावा दें। श्रोताओं, हमें तकनीकों को अपनाकर स्वदेशी समाधान विकसित करना होगा। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए जागरूक जीवन शैली, ऊर्जा बचत और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम भी करनी होगी। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा, महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। श्रोताओं, जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को सफल बनाने के साथ साथ हमें भी अपना पूर्ण सहयोग देना होगा, तभी भारत एक विकसित राष्ट्र का सपना साकार कर पाएगा और निश्चित ही दुनिया में हमारा देश का तिरंगा सफलता के परचम लहराएगा। श्रोताओं, ये था विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत 2047। प्रस्तुति थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार की और अब दें अनुमति अपनी मित्र शालिनी सोनी को। नमस्कार।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विकसित भारत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में पेश है स्वाति नाटेकर की गाई ये गजल।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: लीजिए सुनिए एक और गजल, कलाकार हैं स्वाति नाटेकर।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे स्वाति नाटेकर की गाई गजलें। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में प्रस्तुत है चंद्र प्रकाश सोनवे और साथियों के गाय मालवी लोकगीत। सबसे पहले सुनिए ये गणेश वंदना।

0: लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे चंद्र प्रकाश सोनवे के गाय निमाड़ी लोकगीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7 बजने को हैं समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिवकुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:05 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए अब आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। 7:20 से कार्यक्रम खेती गृहस्थी में अरुणा सराफ का कविता पाठ होगा। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुनिएगा 8:15 से। चित्रगीत 9:15 से सुने जा सकते हैं। 9:30 से राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती और संगीत का खिलवाड़ती कार्यक्रम रात 10 से हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको हमारे कल अर्थात रविवार 31 मई को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। कल सुबह 6:05 से सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 से खेती की बातें में देवी अहिल्याबाई और जल संरक्षण के बारे में बताया जाएगा। श्री रामचरित मानस गान का पाठ होगा 6:40 से। 7:20 से कार्यक्रम योग निरोग में सुनीता जोशी से बातचीत होगी। विषय है ध्यान और योग निद्रा से कैसे बनाएं जीवन को आनंदमय। सदाबहार फिल्म संगीत सुनिएगा कार्यक्रम सुनहरे पल में 7:35 से। 8:30 से बच्चों का कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे सुना जा सकता है। 9:00 से लोक संगीत में संजय महाजन के गाए लोकगीत होंगे। 9:15 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं हरिओम शरण को। 9:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा पंडित ब्रज नारायण के गाए राग अलहैया बिलावल का। 10:05 से सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। 11:00 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात की जाएगी, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 12:00 से फिल्म संगीत, 12:30 से संग्रहालय से, 1:00 से महिला कार्यक्रम, 1:30 से लोक संगीत, 1:45 से सुगम संगीत, 2:00 से फिल्म संगीत और 2:30 से बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। तो ये थे हमारे कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी कल की सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी रोज की तरह संध्या 5:00 से युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ। 5:45 से लुत्फ लीजिएगा फिल्म संगीत का। 6:30 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं हरिओम शरण को। 6:45 से लोक संगीत में बद्रीलाल मालवी के गाए लोकगीत होंगे। 7:20 से कार्यक्रम खेती गृहस्थी में डॉक्टर विनोद अंधारे से भेंटवार्ता होगी। विषय है तंबाकू निषेध दिवस। कार्यक्रम डगर विकास की रात 8:15 से हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत 8:30 से सुना जा सकता है। 9:15 से सुनिएगा चित्रगीत। श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन प्रसारित किया जाएगा 9:30 से। रात 10:00 से अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे हमारे कल अर्थात रविवार 31 मई को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना, और मानसून ने पकड़ी रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ये बातें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही।
5: खेत बचाओ अभियान में गांव गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग का एक्सटेंशन का अमला, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे KVK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथी, ये सब के सब जुटेंगे। और इसी दौरान एक तरफ हम बेहतर और संतुलित खेती पर चर्चा करेंगे, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम बना के वहां देने का प्रयास करेंगे, मैकेनाइजेशन के यंत्र बटना है तो उसमें बट सकते हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड अगर देना है तो उसमें दिए जा सकते हैं, तो जितनी चीजें व्यवहारिक रूप से हो सकती है उसमें देने का प्रयास करेंगे। ये खेत बचाओ अभियान 1 से लेकर 30 जून तक व्यापक पैमाने पर चलेगा।
4: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि गोमती नदी के नाम पर बने INS गोमती युद्धपोत के कारण लखनऊ का नौसेना से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस निर्माण के जरिए देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है।
6: 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1,000 करोड़ रूपये से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस तरह के अनेक उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने हासिल की है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध 1 हफ्ते में दूर कर लिया गया है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
7: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी

0: समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक मानक तय कर दिया है जो कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है ये जाहिर कराता है। ये बातें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान कही। इस वर्ष रक्षा अकादमी ने कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे युवा देश की आशा और सामर्थ्य हैं, उनके विचार और चरित्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरी है कि हमारे युवा जो भी काम करें उसमें वे उत्कृष्टता और संवेदना पर विशेष बल दें। राज्यपाल आज रविन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में आयोजित सिस्टेक ग्लोरी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में संवेदना का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। ममता और करुणा का मोल पैसों से कहीं ज्यादा हुआ करता है, इसलिए भावी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए कभी भी उन लोगों को नहीं भूलें जिन्होंने आपका सहयोग किया है। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में उत्साहजनक बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के आंकड़े बताए गए हैं। ये सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया जिसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवार शामिल हुए। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव वर्ष 2019 से वर्ष 2021 में 88.6% से बढ़कर 2023-24 में 90.6% हो गए हैं। बात मौसम की करते हैं। बारिश की आशा लगाए नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। अगले 4 से 5 दिन के भीतर केरलम और तमिलनाडु में मानसून के पहुंचने के लिए वातावरण की परिस्थितियां तेजी से अनुकूल हो रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा लक्षद्वीप और कन्याकुमारी क्षेत्र के कुछ इलाकों में मानसून आगे बढ़ रहा है। इधर नौतपा के बीच मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट बदली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जबकि शेष इलाकों में खासी गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में तो रातें भी बहुत गर्म रही है। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी क्रम में राजगढ़ में 42, खरगोन में 41.6, भोपाल में 40 और इंदौर में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मंडला जिले में आज वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव अनुश्रवण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कान्हा टाइगर रिजर्व में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायक बैतूल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज नगर पालिका बैतूल अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। शहडोल जिले में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी लक्ष्य से अधिक हुई है। 25,000 मीट्रिक गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस साल 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सीहोर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 2,555 चेक डैम निर्माण, 10 तालाब निर्माण, 17 सोसर निर्माण और 4 तालाब गहरीकरण जैसे कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किए गए हैं। नीमच जिला चिकित्सालय के रेडक्रॉस सभागार में वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएस बघेल ने आज जिला अस्पताल झाबुआ के ब्लड स्टोरेज सेंटर का निरीक्षण किया और आमजन को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी। छिंदवाड़ा जिले में स्कूल छोड़ चुके या नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड खंडवा द्वारा वर्ष 2026-27 में कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक और युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हार्निया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समय पर उपचार के लिए इंदौर में 2 दिवसीय निःशुल्क हार्निया जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना और मानसून ने पकड़ी है रफ्तार। इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी

सभी किसान भाई बहन का बिंदु की राम राम घणो घणो स्वागत है आपको इना कार्यक्रम में। और अपन अपना खेतीबाड़ी की बात करा तो देखो खेतीबाड़ी में अपना को जब अपने फसल अपना का वावनो है तब अच्छे तो घनी सारी चीज न की अपना का जरूरत पड़े जैसे कि अभी देखो अपना का बीज लावनो आना छे तो फिर कहाँ की फसल लेनो उना किस्म को बीज अपना का लेनो और भी जैसे कीटनाशक छे खाद छे और अपना जो कृषि यंत्र छे उनकी भी अपना को सोय करनो पड़े। और पहले से अगर हम कर ले वहाँ तो अपना का छे तो जब वावनी करेंगा तमा छे तो अपना कोई तकलीफ नहीं होएगा और सब चीज़ ना अपना पास में रहेगा। पर ये तमज भी सके जब अपना पास में ओका लेना पैसा होए तो पैसा की बचत हम करता रहें पर फिर भी ओका बाद भी हमका अगर ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है कोई काम काज करना का लेना तो कई बार हम कहे तो कर्जो भी लेनो पड़े। अब कर्जो लेना का लेना बहुत सारी जो योजना है ओका अंतर्गत अपना लेवा तो अपना का कर्जो महंगो नहीं पड़तो और अपना का सुविधा न भी मिले ऐसी बहुत सारी योजना है जिनका बारे में अपना का जानकारी रखनो घणो जरूरी है। हमारा जैसा छोटा छोटा जो अपना उद्योग करने वाला भाई बहन है जी जो कि अपनो नयो काम का शुरू करी रहा या जिनका पास थोड़ी सी खेती है और कुछ नयो में करनू चाहे तो वो एका लेना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का अंतर्गत यो कर्जो ले सके। एम छे तो बहुत सारी सुविधाएं ये दी गई कि भाई एम जो एक सबसे पहले ये तो कि जो छोटो किसान है या छोटो उद्यमी है या नयो उद्यमी है ओख ये कर्जो मिली सके। एम छे तो बिना कोई गारंटी का 20 लाख तक को आप कर्जो मिली सके। एका लेना छे तो उन्हें एक स्तर बनाई रखे कि वैसे जैसे जख कम कर्जो चाहे जाए जैसे कि 50,000 तक चाहे जाए तो ओख छे तो शिशु नाम दे रही हो किशोर नाम दियो 50,000 1 से 5 लाख तक का लेना आना तरुण नाम दियो 5 से 10 लाख का लेना और तरुण प्लस 10 से 20 लाख तक को जो कर्जो ले उनका लेना छे। भाई ये को उद्देश्य ये छे कि जो खेती बाड़ी से जुड़ेल छे या कोई ओका संबंधित कायम काम करी रहा है नए उद्योग डालनू चाह रहा है तो उना उद्योग शुरू करना का लेना ओखा थोड़ी बहुत पैसा की जरूरत है तो इना कर्जा का माध्यम से वो छे तो अपनी जो भी जरूरत छे को पूरो करी सके और अपना काम काज का शुरू करी सके। एका लेना छे तो आवेदन अगर करनो तो सबसे पहले पहचान पत्र होना चाहिए आधार कार्ड हो वोटर कार्ड हो इस तरह से और निवासी को प्रमाण पत्र हो वो भी जरूरी है आना साथ में 2 पासपोर्ट साइज का फोटो भी होना चाहिए। तो एका लेना किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाकर एका लेना आवेदन कर सकें और ये जो योजना है एको अपन लाभ ले सकें। तो हमारा किसान भाई बहन जरूर से इन बात को ध्यान रखी करना और अगर उनका कर्जा की जरूरत छे तो ये ना योजना का अंतर्गत कर्जो ले सके और अपना कामकाज का शुरू भी कर सके। भाई अच्छो कामकाज अगर कराएं तो हमको शुरुआत तो थोड़ा सा कामकाज छोटो कामकाज जब चालू कराएं ओका से करना पड़े धीरे धीरे हम अपना कामकाज का बढ़ावें ओमो नफो नुकसान ये सब देखाएं ओका बाद में छे तो हम आगे बढ़ाएं तो ये सब बात देखना जरूरी भी छे क्योंकि अगर हम अपनों लाभ हानि फायदो नुकसान नहीं देखेंगा तो हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हमको इना कामकाज में फायदो ही रोज कि नुकसान भी रोज। अगर हमको नुकसान हो तो हम उना कामकाज का बदली देवें या ओख बंद करके कोई दूसरों चालू करी रहें तो ये भी सही है क्योंकि जीवन का चलावनो या अपना आपका कोई नयो कामकाज में लगावनो तो ये करनो जरूरी है। पर सब काम हमारा किसान भाई बहन अगर सावधानी से करे तो किसी तरह को कर्जो नहीं होएगा और अगर कोई कर्जो लियो तो वो भी जल्दी चुकतो ही जाएगा। तो इन्हीं बात को ध्यान रखा और अब मन करी रोज की एक लोकगीत सुना तो गीता पराग को गायल यो लोकगीत सुना।

0: अभी हमारा किसान भाई बहन ने ना गीता पराग ने साथी को गायल यो लोग गीत सुनो और आनंद भी आयो। किसान भाइयों ने हमने शुरुआत करी थी गणेश वंदना से और पर अपना जो कामकाज है ओके भी हम शुरुआत कहीं ना कहीं से करांच। अच्छो कामकाज हमको चलाना का लेना छे तो सब चीज़ ना की जरूरत है। हम पहले से होकर पूर्व योजना अगर बनाई का ना कामकाज करा तो हमारा काम सफल भी हो जाए। भाई कहीं अगर जानू रहे तो भी हम तैयारी कराएं और कहीं जरूरी में जानू रहे तो फिर हमका तुरंत झटपट तैयारी करी लू जाए। ऐसे हमारो खेती बाड़ी को भी काम छे हम अगर अभी से तैयारी करावा तो हम छे तो सही तरीका से कोई भी जो फसल हम कर लेंगे उखर ले सकेंगा। भाई उनाड़ा की बखत चली रही तो उनाड़ा की बखत में अपना आप को बचाव तो हमको करना पड़े। खेती बाड़ी का काम है वो तो करनूच पड़ेगा पर दोपहर की बखत में जवा छे तो खूब गर्म हवा न चले तो वह अपना आप का थोड़ा सा बचाई का अगर रखा तो हम सुबह न संजा की बखत ज़्यादा काम करी सकेंगा। इन्हीं बखत में अभी जैसे कि नौतपा चली रोज रोहिण तपी रही तो घाम भी अच्छो पड़ी रोज असाय में छे तो कभी लू लगी जाए तो ओका लेना अपना का सावधानी से रहनू कि ताकि लू नहीं लगा। बाहर बहुत जरूरी हो तमज का निका साथ अच्छे तो ठंडो जो पदार्थ है पानी वगैरह छे छाछ छे नींबू पानी छे अपनो पणो छे गन्ना को रस इसा जो पीना का पदार्थ छे उनका पी कर ना बाहर निका पूरा बदन का ढाकी का रखा सूती कपड़ा पहरा और माथा का भी अच्छो ढाकी टोपी ना निकाल क्योंकि घाम में अगर जाई रहा तो अपना आपका पूरी तरह ढाकी का निकालगा तो जरा हाँ घाम को असर कम पड़ेगा। साथ कभी छतरी लेकर न जाओ तो अरु भी अच्छो छे कि सीधो घाम अपना माथे पर नहीं लगेगा क्योंकि एकासी छे तो चक्कर आवणु सिर दर्द बुखार ये सब हो जाए। ऐसा जब गर्मी में छे तो खाना पीना को भी हम ध्यान रखा ताकि हमारो स्वास्थ्य अच्छो रहे। कई बार हम देखा आज कि कहीं भी बर्फ मिला या ठंडो कुछ मिला तो हम झट उखल ले लेवाएं या नाना नाना बाग जो छे वो भी एको उपयोग कर ले वो भी बर्फ वगैरह है बर्फ का गोला ये सब खाए पर वो बर्फ किना तरीका से बनाए गए अच्छा पानी से छे खराब पानी से छे ये नहीं मालूम पड़ता है। तो हम जहाँ तक हो बाहर की ऐसी कोई चीज़ ना नहीं खावा जैसे से हमारे स्वास्थ्य खराब हो। जहाँ तक बना घर को बने शुद्ध सात्विक आना कम मसाला को तड़ेल गुड़ेल अगर खाऊंगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसान भाइयों बातचीत आगे भी करेंगा पर अब सुना कविता पाठ अरुणा सराफ अपनी जो कवित्री बहन है वो अपना सुने रही अपनी रचना ना तो सुना इनका सी।
1: मैं प्रोफेसर अरुणा सराफ मेरी कुछ रचनाएं मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक लड़की एक बिटिया अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में किस प्रकार समाज के सामने व्यक्त करती है इसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। आप सुनिए। मुझे लड़की ही रहने दो, मुझे लड़की ही रहने दो, मत पहनाओ माँ, मत पहनाओ माँ मुझे पुरुष का वेश, मत पहनाओ माँ मुझे पुरुष का वेश, लड़का मुझे मत बनाओ। मैं लड़की के रूप में जन्मी हूँ, मैं लड़की के रूप में जन्मी हूँ, मुझे लड़की ही रहने दो माँ, मुझे लड़की ही रहने दो माँ, मेरा मन कोमल है माँ, मेरा मन कोमल है माँ, समझो मेरी भावनाओं को, समझो मेरी भावनाओं को, इस वेशभूषा में तो मर रही है मेरी सारी संवेदनाएं, इस वेशभूषा में मर रही है मेरी सारी संवेदनाएं, फिर निज स्वरूप को तजना प्र...

से दूध की धार बहा सकता है माँ। अपने देश की संस्कृति यह तो पश्चिम से आई हुई है माँ। अपने देश की जो संस्कृति है वह तो पश्चिम से आई हुई है। सबसे घृणित विकृति जहाँ विवाह एक सौदा होता है, जहाँ विवाह को एक सौदा माना जाता है, जीवन का संस्कार नहीं है विवाह। पल में बदल जाते हैं जहाँ रिश्ते, पल में बदल जाते हैं जहाँ रिश्ते, भावों का वह संसार नहीं है, भावों का वहाँ संसार नहीं है। एक बात और सुन ले माँ, एक बात और सुन ले माँ, मैं कायर और कमजोर नहीं हूँ, मैं कायर और कमजोर नहीं हूँ। मुझे दबा सके तो कोई, इतना किसी में जोर भी नहीं है माँ। मुझे दबा सके किसी में इतना जोर भी नहीं है माँ। समय आने पर मैं माँ रणचंडी भी बन सकती हूँ। अपने आत्म सम्मान के लिए दुनिया से भी लड़ सकती हूँ। थोड़ा पाश्चात्य का अनुसरण, भारत का इतिहास तो बताओ माँ। लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती सी वीरंगना मुझे भी बनाओ माँ, मुझे भी बनाओ माँ, माँ मुझे भी बनाओ। मुझे लड़की ही रहने दो माँ, मुझे लड़की ही रहने दो। मत पहनाओ माँ, मत पहनाओ माँ, मुझे पुरुष का वेश, मुझे पुरुष का वेश। मेरी दूसरी रचना है समय के ऊपर, लिखी है कि समय सदैव गतिमान रहता है, वह किसी के लिए नहीं रुकता है, समय निरंतर चलता रहता है। समय का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है। कोई नहीं बांध सकता है समय की चलती चाल को, कोई नहीं बांध सकता है समय की चलती चाल को, कोई नहीं रोक सकता है धरती पर आए भूचाल को, कोई नहीं रोक सकता है धरती पर आए भूचाल को। पर्वतों से चट्टाने अब चाहे जब धसक रही है, पर्वतों से चट्टाने अब चाहे जब धसक रही है, सूरज की तेज किरणें आँख से धधक रही है, सूरज की तेज किरणें आँख से धधक रही है। रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो इस बढ़ते हुए बबाल को, कोई नहीं रोक सकता है धरती पर आए भूचाल को, कोई नहीं रोक सकता है धरती पर आए भूचाल को। गंगा की पावनता भी धीरे धीरे सिमट रही है, गंगा की पावनता भी धीरे धीरे सिमट रही है। मन भी, मन में बसी मानवता भी इधर उधर भटक रही है, मन में बसी मानवता भी इधर उधर भटक रही है। रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो इस बढ़ते जंजाल को, इस बढ़ते जंजाल को, कोई नहीं रोक सकता धरती पर आए भूचाल को, धरती पर आए भूचाल को। बदल रही अब तासीर, पक्षियों के चहकने की भी कोई नहीं उठाता है अब सच्चे सवालों को, अब कोई नहीं उठाता है सच्चे सवालों को, कोई नहीं रोक सकता है धरती पर आए भूचाल को, धरती पर आए भूचाल को, कोई नहीं बांध सकता है समय की चलती चाल को, समय की चलती चाल को, कोई नहीं रोक सकता है धरती पर आए भूचाल को, धरती पर आए भूचाल को। जिंदगी का सफर निरंतर चलता रहता है, कभी वह दुखदाई होता है, कभी वह सुखदाई होता है, कभी हमारे दिल को सुकून देता है, कभी हमको कई प्रकार की यादें उससे मिलती रहती है, कई प्रकार से हम उस सफर के कारण बहुत प्रभावित भी हो जाते हैं। इसी के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता या रचना लिखने का प्रयास किया है। एक सफर है जिंदगी, एक सफर है जिंदगी, एक सफर है जिंदगी, कभी बदतर तो कभी बेहतर, कभी बदतर तो कभी बेहतर। एक दुभर है जिंदगी, एक दुभर है जिंदगी, कभी चलकर तो कभी रुककर, कभी चलकर तो कभी रुककर। एक सफर है जिंदगी, कहाँ से आए थे माँ की कोख में, कहाँ से आए थे हम माँ की कोख में किसी को पता नहीं, रोते रोते जन्म हुआ था बस यही खबर है जिंदगी, रोते रोते जन्म हुआ था बस यही खबर है जिंदगी। एक सफर है जिंदगी,
एक सफर है।

जिंदगी, पिया था माँ का दूध आते ही इस संसार में, पिया था माँ का दूध आते ही इस संसार में, इसी वजह से आज तक सुखकर है हमारी जिंदगी, इसी वजह से आज तक सुखकर है हमारी जिंदगी। एक सफर है जिंदगी, एक सफर है जिंदगी, बेफिक्री से सरोबार था जीवन, बेफिक्री से सरोबार था जीवन, वो प्यारा सा बचपन, वो प्यारा सा बचपन, समंदर से उछलती हुई, समंदर से उछलती हुई एक लहर है जिंदगी, समंदर से उछलती हुई एक लहर है जिंदगी, एक सफर है जिंदगी, एक सफर है जिंदगी। होश नहीं खोया था कभी, होश नहीं खोया था कभी जवानी के जोश में, होश नहीं खोया था कभी जवानी के जोश में, मस्ती के आलम में आज भी तरोताबार है जिंदगी, आज भी तरोताबार है जिंदगी। एक सफर है जिंदगी, एक सफर है जिंदगी, कभी बदतर तो कभी बेहतर। खुश मिजाजी से रहना शिद्दत है मेरी, खुश मिजाजी से रहना शिद्दत है मेरी, जन्नत की जुस्तजू में बड़े वो डगर है जिंदगी, जन्नत की जुस्तजू में बड़े वो डगर है जिंदगी। एक सफर है जिंदगी, एक सफर है जिंदगी, कभी बदतर तो कभी बेहतर। एक दुभर है जिंदगी, कभी चलकर तो कभी रुककर। एक सफर है जिंदगी, एक सफर है जिंदगी। जीवन, हमारा जो जीवन है उसको हमेशा आनंद से व्यतीत करना चाहिए, चाहे कौन सा भी समय हो, दुख का समय हो, सुख का समय हो। यदि हम उस परिस्थिति को, उस समय को यदि हम हंसकर टाल देते हैं तो हमारा समय वो बहुत बेहतर निकलता है, हम उसको और आनंद के साथ गुजार सकते हैं। इसी के ऊपर मैंने एक रचना और लिखी है, मुस्कुराकर जी लेती हूँ मैं, मुस्कुराकर जी लेती हूँ मैं, दिल पर लगे हर जख्म को हंसकर सह लेती हूँ मैं, दिल पर लगे हर जख्म को हंसकर सह लेती हूँ मैं। मुस्कुराने की और बात करने की आदत है मेरी, मुस्कुराने की और बात करने की आदत है मेरी, इसलिए मुस्कुराकर जी लेती हूँ मैं, इसलिए मुस्कुराकर जी लेती हूँ मैं। बहुत सुनहरे दिन भी देखे हैं, बहुत सुनहरे दिन भी देखे हैं, देखी हैं कई दुख भरी रातें भी, देखी हैं कई दुख भरी रातें भी, सहे व्यंग के बाण भी कई बार, सहे व्यंग के बाण भी कई बार, सुनी कई बार मन भावन बातें भी, सुनी कई बार मन भावन बातें भी। डूबते सूरज को रोज नमन कर लेती हूँ, मुस्कुराने की आदत है इसलिए मुस्कुराकर सब दुखों को सह लेती हूँ मैं, दिल पर लगे हर जख्म को हंसकर सह लेती। जीत के जश्न भी मनाए हैं कई बार, कई बार हार ने भी बहुत रुलाया है, कई बार हार ने भी बहुत रुलाया है, जय पराजय के स्वाद को एक सा चख लेती हूँ मैं, एक सा चख लेती हूँ मैं, मुस्कुराने की आदत है मेरी इसलिए मुस्कुराकर जी लेती हूँ मैं, इसलिए मुस्कुराकर जी लेती हूँ मैं, इसलिए मुस्कुराकर जी लेती हूँ मैं, दिल पर लगे हर जख्म को हंसकर सह लेती हूँ मैं। हम तारीखों में जीते हैं, तारीखों की रोज बात करते हैं, तारीखें सदैव हमको याद भी रहती हैं। इसी के ऊपर एक छोटी सी रचना है, तारीखों का भी वजूद होता है, याद रह जाती है तारीखें जहन में, याद रह जाती है तारीखें जहन में, खुशियों की तारीखें, गमों की तारीखें, जिंदगी में किसी के आने की तारीखें, जिंदगी से किसी के जाने की तारीखें, जुड़ी होती है स्मृतियां तारीखों से, जुड़ी होती है स्मृतियां तारीखों से। वो तारीखें तो बार बार आती है, वो तारीखें तो बार बार आती है, पर वो यादें वहीं के वहीं रह जाती है, वह यादें वहीं के वहीं रह जाती है, उस तारीखों में, उस तारीखों में।
कोशिश करते हैं जीने के।

0: वे पल फिर से आए। हम कोशिश करते हैं जीने के वे पल फिर से आए, पर वो पल कहीं छूट जाते हैं, पर वो पल वहीं छूट जाते हैं और रह जाते हैं बस तारीख है, सिर्फ तारीख है, सिर्फ तारीख है, सिर्फ तारीख है। तारीखों का भी वजूद होता है, तारीखों का भी वजूद होता है, याद रह जाती है तारीख है हमेशा जहन में।
1: तो किसान भाइयों, अभी अपन अरुणा सराफ से उनकी कविता ने सुनी और अच्छी भी लगी। बहुत सारी कविता ना कई बार प्रेरणादायी भी रहे, कुछ कविता ना ऐसी भी रहे जो अपना जीवन में जो घटना न घटे ओख भी छे तो ताजो करी जाए, ऐसी कुछ कविता ना थी। और फिर मन करी रोज की करूँ लोकगीत सुना यो लोकगीत।

तो अभी हमारा किसान भाई बहन ने प्रेम सिंह देपाल पुरिया ने साथी को गाय रियो लोकगीत सुनियो और आनंद भी आयो। किसान भाई बहन, हमारो गांव, हमारो शहर, हमारो मोहल्लो, कॉलोनी, जो भी कह लियो, साफ सफाई अगर रहे और साथ ही अपना घर में भी, तो हमका खुद को भी अच्छा लगे और एक साथ ही हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। अगर साफ सफाई गांव में नहीं रहे, घर में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं देखा कि कहीं ना कहीं बीमारी ना फैलती जाए और ये बड़ो रूप भी ले ले। तो हमका साफ सफाई को खास ध्यान रखनु कि भाई अपना आसपास अपन साफ स्वच्छता रखा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा ना का लगावा, जेका से पर्यावरण अच्छो रहे। शुद्ध वातावरण अगर रहेगा, हवा शुद्ध रहेगा, तो हमका शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपन दिन दिन देखता जाई राज कि अपना जो पेड़ पौधा छे वो कम होता जाई राज और रहना की जगह खूब बढ़ती जा रही। और ये ना रहना का चक्कर में जहाँ सिर्फ दुई लोग छे या घर में चार लोग छे या तीन लोग छे, ओका लेना छः कमरा की जगह आठ कमरा जगह, इतो बड़ो घर अगर रखी रहा है तो और वहाँ देखो तो किसी भी तरह को कोई बड़ो पेड़ नहीं है, तो ये कितनी एम अपना का शर्म वाली बात छे कि भाई अपन रहना का लेना तो इतनी सारी बड़ी जगह बनी रहा है और आसपास एक भी झाड़ नहीं है। क्योंकि अगर जिनका से अपन सांस ले रहे अपनों जीवन चली रोज ओज नहीं होएगा तो अपन किस तरह से स्वस्थ रह पाऊँगा। तो कोशिश ये करा कि ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ पेड़ लगावा ना, इतनी बड़ी जगह का रहना का अलावा एम हम अगर पेड़ लगावांगा कुछ ऐसा पेड़ पौधा जो कि अपना का छे तो फल फूल भी दे, ओकासी अपन फल फूल भी लेवा तो अपनों जीवन भी चलेगा। अपनों एक छे तो कहना चाहिए कि जो अपना घर में जैसे मान लो नींबू को, मिर्ची को या धनिया को, पालक को, कोई सो भी छोटो पौधो रहे तो उन्हीं वक्त में अपन उन्हीं चीज़ को उपयोग कर लेवा। हमारी बहन छे ग्रह वाटिका में भी लगाए जिस तरह से, और भाई अपना घर का आसपास ये रहनु जरूरी भी छे, जेका से अपन अच्छो वातावरण बनाई सका और बर वक्त पर अपना का कई चीज़ की ज़रूरत हो नहीं तो यहाँ से अपन ले सका अपना छे तो चौका का लेना, अपना रोटी पानी का लेना। तो ये तो झाड़ लगाने की बात छे। तो इस तरह ये करूँ अपन लोग सुना रामचंद्र गंगोलिया ने साथी ने को गाया।

तो अभी अपना किसान भाई बहन ना रामचंद्र गंगोलिया ने साथियों को गायल यो लोकगीत सुनो और आनंद भी आए और कार्यक्रम की बखत भी हुई। तो चलते चलते काल की भी तय करा, काल सौंदर्य से खेती की बात नामा देवी अहिल्या होलकर और जल संरक्षण का बारे में बताओगा अनुराधा शर्मा और संजय का खेती गृहस्थी में आज की बात लोकगीत होएगा ना, साथ ही एक हम वार्ता सुनाऊंगा तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर विनोद अंधारे से और एक साथ सभी किसान भाई बहनों का राम राम पछा मिलंगा तब तक का लेना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 कल जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। क्या है इस सर्वेक्षण का महत्व, क्या है इसके प्रमुख पहलू और क्या है आगे की संभावनाएं, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुश्री आराधना पटनायक। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
2: सभी को मेरा नमस्कार।
1: जी आराधना जी, ये जो सर्वेक्षण जारी हुआ है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और जो NFHS 6/2023-24 के आंकड़ों के आधार पर जो जारी हुआ है कल, उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है।
2: ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है, ये 2023-24 के लिए जारी हुआ है, ये 6th सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण लगभग 6.79 लाख घरों को कवर किया है और इसमें लगभग 7.16 लाख महिलाएं और लगभग 1 लाख पुरुषों को कवर किया गया है। ये पूरे देश में ये सर्वेक्षण हुआ है और इस सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्य रूप से हम कई सारे स्वास्थ्य के जो मानक हैं उनमें क्या प्रगति हुई है, उस पर हम मुख्य रूप से ये सर्वेक्षण करते हैं। चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे पोषण की बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, परिवार नियोजन की बात करें, बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी चीजें इस सर्वेक्षण में कवर करते हैं। इस बार जो ये सर्वेक्षण हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से जो हमें सबसे अच्छी उपलब्धि मिली है वो है कि हमारे जो प्रसव अस्पतालों में जो होता है, वो प्रसव हमारा लगभग 88.6 से बढ़कर 90.6 हो गया है। फिर जो बच्चों का टीकाकरण होता है, वो लगभग 96% से ऊपर चल रहा है। और सबसे अच्छी बात इसमें है कि लगभग 95.6% बच्चों को जितने भी टीकाकरण जो लगते हैं, वो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो मुझे लगती है उपलब्धि है। हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जहां हम ये सुविधाएं देते हैं टीकाकरण का, और जो हमारी ANM बहनें बच्चों का टीकाकरण करती है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें इसमें उत्साहवर्धक हमें सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट आया है। दूसरा एक और है, ANC जो गर्भवती माताओं का प्रसव पूर्व जांच जो किया जाता है, वो करीब 92% से बढ़कर 95.9 वो हो गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है हमारा। और बच्चों का जो टीकाकरण करते हैं, तो पूर्ण टीकाकरण वो 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है। तो यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। पोस्ट नेटल केयर, जो प्रसव के पश्चात जो माताओं को सुविधा देनी है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, 79.1% से 85.3% वो बढ़ा है। तो इस तरह काफी सारे उत्साहवर्धक हमारे जो इंडिकेटर्स आए हैं, सभी, चाहे वो मातृत्व की बात करें या शिशु की बात करें, सभी में ये बढ़ोतरी हुई है। और एक और मैं आंकड़ा भी बताना चाहूंगी, जो हमारे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में जो एक ये समस्या रहती है, उसमें काफी कमी आई है।
1: जी,
2: तो जो स्टंटिंग और वेस्टिंग, हम सीवियर वेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें काफी कमी आई है। और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज काफी बढ़ा है, 41% से बढ़कर वो 60.2% हुआ है। तो इसमें जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ है, PM जन आरोग्य योजना, उसकी एक अहम भूमिका नजर आ रही है।
1: सो जैसा आपने मेंशन किया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऐसी और भी इसके जैसी जो प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उन्होंने आपको लगता है कि विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
2: हाँ, जो पहला मैंने कहा कि सबसे पहले जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के समीप ले जाएं। और उसमें कई सारे पैकेजेस इसमें जोड़े गए थे। पहले हम लोग मुख्य रूप से मातृत्व और शिशु पर ही, स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते थे, अब वृद्ध लोगों पर, फिर जो बढ़ते हुए NCDs हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर, पैलेटिव केयर, ऐसे और 6 पैकेजेस जोड़े गए, तो अभी कुल मिला के 12 पैकेजेस ये सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दिए जाते हैं। और
1: सभी आयु वर्ग के लिए
2: मुझे खुशी है बताने में कि ये जो टोटल फुटफॉल की बात अगर हम करें 2018 से लेकर अब तक लगभग 522.41 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। और जब हम सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो वहां पर जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ आ गया
1: जी,
2: उसके माध्यम से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं। जो 5 लाख अगर कोई भी बीमारी है और उसका इलाज वो कराना चाह रहे हैं तो उसमें आयुष्मान कार्ड जो दिए जाते हैं, लगभग 44 करोड़ कार्ड दिए गए हैं और लगभग 12 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथराइज हुए हैं। और जो ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक वो लगभग 1.85 लाख करोड़ का हमारे लगभग 36,000 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिया गया है
1: जी।
2: और अगर हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की आप बात करें तो उसमें जैसे हमारे कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे PM जनमन, जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, PVTGs, उन तक पहुंचने के लिए हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाते हैं जिसके माध्यम से हम उनके लिए कैंप्स करके उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान देते हुए। जहां भी अगर हमारे स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर के अंदर में नहीं है क्योंकि वहां आबादी बहुत कम है, तो वैसे जगह भी हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से यही जो 12 पैकेजेस की मैं बात कर रही थी वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम हर महीने आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करते हैं। ये शिविर हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो। और वहाँ पर स्पेशलिस्ट जाते हैं, जो CHC जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस से स्पेशलिस्ट जाते हैं और वो विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं। और उसी तरह जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर्स है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO है, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स जाते हैं, तो डॉक्टर्स जाते हैं सेवाएं देने के लिए। इसके अलावा हमारा टेली कंसल्टेशन भी होता है जिसके माध्यम से डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई मरीज ऐसे आए हैं जिनको वो स्पेशलिस्ट सेवा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दवा और डायग्नोस्टिक, जो मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उसमें फ्री ड्रग इनिशिएटिव हमारा प्रोग्राम है और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, सरकारी अस्पतालों में वो मुफ्त दिया जाता है।
1: तो ये जो इतना व्यापक आपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जो हमारे देश में उपलब्ध है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से जनधन, आधार, मोबाइल के बल पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है आम आदमियों के पास, आपको लगता है कि प्रौद्योगिकी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है? ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और उसके लिए जो पहुंच है वो भी आसान है एक आम नागरिक के लिए, इन दोनों चीजों में टेक्नोलॉजी का ओवरऑल क्या रोल है? ये जो हम पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम में इतना भारी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं,
2: ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम जो सेवाएं देते हैं 12 पैकेजेस, अगर वहां पर अगर किसी को कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो ई संजीवनी हमारा टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है, इसके माध्यम से आप स्पेशलिस्ट से सेवाएं ले सकते हैं। फिर अगर आपको मानसिक कोई बीमारी है या मानसिक आपको कोई परेशानी है तो हमारा एक टेली मानस कार्यक्रम है जिसमें काउंसलर से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी मैं बताना चाहूंगी, 1-44-16 ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी डायल कर सकता है। और हमारे करीब ऐसे 53 सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो कोई भी अगर कनेक्ट करता है और उसको कोई भी मानसिक बीमारी है, अगर दवा की आवश्यकता है या कोई सुझाव की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं, काउंसलर्स बात करेंगे और फिर वो उन्हें साइकेट्रिस्ट से जोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो बता रही थी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो मिशन है हमारा, उसके NHM के माध्यम से जो हम विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे MMR कम करने की बात हो या under 5 मोर्टालिटी घटाने की बात हो या डिजीज एलिमिनेशन की, हर एक में हमारा पोर्टल है जिसमें हम ट्रैक करते हैं, एक एक मरीज को ट्रैक करते हैं। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे हमारा UWIN पोर्टल है तो बच्चों का टीकाकरण इसमें पूरा ट्रैक होता है, तो हर बच्चे का जिस दिन ड्यू उसका डेट है उससे पहले माँ को वो मैसेज जाता है कि आप अपने बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले आइए टीकाकरण करने के लिए। अगर वो मिस कर गई तो उसको फिर जाता है कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर नहीं आए, अगला ये डेट है उस पर जरूर आए। तो ये रिमाइंडर भी जाता है, वो घर बैठे बैठे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती है बच्चे का। तो इस तरह कई सारे हमारे पोर्टल्स है। एनसीडी के लिए एक अलग पोर्टल है जिसके माध्यम से हम जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर, ये सभी की स्क्रीनिंग हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करते हैं। उनका फिर ट्रैकिंग होता है कि उनको वो रेफर

0: किए गए, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, अंडर कंट्रोल है कि नहीं, टीबी का निक्षय पोर्टल है, तो इस तरह हर एक प्रोग्राम के लिए, लेप्रेसी के लिए निकुष्ट पोर्टल है, तो हर एक प्रोग्राम के लिए हमारा एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम ट्रैक करते हैं। और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हम लोगों ने इन सभी पोर्टल्स का भी इंटीग्रेशन करके एक स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है, और उसी के साथ साथ उसका स्वस्थ भारत ऐप भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम सभी के बीच में जो हम समन्वय स्थापित करना चाह रहे हैं कि मरीज तो एक है, उसको तीन प्रकार की बीमारियां हो सकती है, लेकिन पहले हम अलग अलग पोर्टल से ट्रैक नहीं कर पाते थे। अब
1: जी
0: इस स्वस्थ भारत पोर्टल से, अगर उदाहरण स्वरूप अगर कोई गर्भवती माता है वो अपना चेकअप के लिए गई, लेकिन पहले वो 2 महीने पहले गई थी और डायबिटिक पाई गई थी, तो ये हमें बता देगा कि अब वो आई है गर्भवती माँ अपने चेकअप के लिए, लेकिन वो महिला पहले से डायबिटिक है, तो
1: जी
0: ये जानकारी प्राप्त करके फिर डॉक्टर उनको फिर विशेष परामर्श दे सकते हैं। तो ये डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से हम जो कहते हैं ना, लास्ट माइल तक पहुंचना, आखिरी घर तक पहुंचना और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, वो हम कर पा रहे हैं। और
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में प्रमुख उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है।
0: इस सर्वे में काफी अच्छी प्रगति हुई, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में हमारे लिए और इस सर्वे में भी ये आया है, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा
1: जी
0: इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो और वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करे, जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, इस सर्वे में भी आया है कि एनसीडीज बढ़े हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन वैसे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन डायबिटीज काफी बढ़ा है, एडल्ट ओबेसिटी बढ़ा है, तो ये एक दिखा रहा है कि अब हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो NPNCD प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और तीन प्रकार के जो कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, इसका हम नियमित रूप से स्क्रीनिंग करते हैं। और 2018 से ये स्क्रीनिंग प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक हम लोग लगभग 42 करोड़ हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग कर चुके हैं और डायबिटीज का 42 करोड़ लोगों का कर चुके हैं, लगभग 35 करोड़ से ऊपर लोगों का ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, लगभग 16 करोड़ से ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं का स्क्रीनिंग हो गया है और सर्वाइकल कैंसर का भी 9 करोड़ से ऊपर का स्क्रीनिंग कर लिए हैं। हमारे लिए यही चुनौती है कि स्क्रीनिंग तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, प्लस PMJ के तहत अगर आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां भी ट्रीटमेंट आपका फ्री है। जो खुद को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, कम तेल का उपयोग करना है, कम नमक का उपयोग करना है, कम चीनी का उपयोग करना है, ये इसको आम लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। एक और भी हम लोग करते हैं, ईट राइट कैंपेन हमारा FSSAI के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में काफी अवेयरनेस कर रहे हैं। फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोग महीने में 10 दिन वेलनेस सेशंस करते हैं, जिसमें योगा, जुम्बा ये सब भी किया जाता है, उसमें भी लोगों को जागरूक किया जाता है। हर व्यक्ति को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के दिन में चुनौती, हर कोई अगर खुद को स्वस्थ रखने के लिए खुद मेहनत करे तो सरकारी तंत्र पर बोझ काफी कम होगा। सरकार लगातार प्रयासरत है इसमें कार्य करने में और प्रिवेंशन पर ध्यान देने में, आशा बहनें उनको ट्रेनिंग दिया गया है और सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं सभी को ट्रेनिंग दिया गया है जागरूक करने के लिए, लेकिन लोगों को भी खुद आगे आना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा।
1: आराधना जी, आपने इतनी समग्र चर्चा की और जो हमारा देश का हेल्थ इको सिस्टम है उसमें क्या प्रगति हो रही है उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में।
4: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया के सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। चलते हैं कार्यक्रम के आज के सफर पर। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की,

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता

0: चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडलेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का।
1: पानी का मोल समझ

0: और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
2: लता मंगेशकर और कमल बारोट को सुनिए फिल्म पारसमणि में। बोल असद भोपाली के हैं, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: मन्ना डे और साथियों की आवाज में सुनिए फिल्म तीसरी कसम का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आप सुन रहे थे चित्रगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापा खाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत

0: सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्यामे आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहां तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना। और मान

0: पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी की 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

0: कि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
1: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने ये कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
2: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की, स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है, बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रूपये थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया, एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो, तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3

0: मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
1: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो।
0: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। देखिए हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
1: श्वेता एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स।
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स है।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपर गामिनी।
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ वर्ड्स जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती। तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
0: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक तो हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है।
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
1: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था उसमें पोर की वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी।

0: मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने गोप्रो भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूं, तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड,
0: यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस
2: मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो उस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी वो बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
0: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उस पे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है
1: जी।
4: तो अगर आप सामान्य बीए बीकॉम बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से
4: जी,
1: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें तो?
4: देखिए ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही है तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरिंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
2: नमस्कार। इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
1: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
2: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
1: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
2: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
1: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
2: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस

0: बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही है राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
0: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिसनिंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टूडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।